हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने वाले हैं। सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। समाचारों के तुरंत बाद सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल करिए प्रतीक्षा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रति

0: प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। वंदन वार,
3: विविध भारती,

आज का सुविचार हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। मुस्कुरा कर उठिए, क्योंकि खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर और शाम को पुनः 6:35 पर आप जी माफ़ कीजिएगा 6:35 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरित मानस गान, जिसका भाग 193 प्रसारित होगा। 6:45 पर संगीत सरिता, जिसका पुनः प्रसारण शाम को 6:45 पर आप सुनते हैं, जिसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे हैं एसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा, इसका भाग 8 आप सुनेंगे। सुबह 7 आप सुनते हैं पुराने गीतों के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार की, ये कार्यक्रम 7:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 9:30 पर और

रात को 9:30 पर आज के फनकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, प्रोटीन और विटामिन का महत्व इस विषय पर डॉक्टर मीनल शाह से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति रामकरण मीणा। प्रसारण का समय 10:00। रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:00। 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। दो बजकर 30 पर सदाबहार नगमे। 3:00 कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी। अपराध बोध से बचना जरूरी, मुहावरों की दुनिया आंखों का तारा होना, उद्यमी महिला कल्पना सरोज की बातें होंगी। बातें हल्की फुल्की, परीक्षा परिणाम पर कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलाइट के सितारे ये आप सुनेंगे। पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति शकुंतला पंडित की है। शाम 5:00 छाया गीत। 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:30 पर झरोखा। 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगी 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8:00 हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका प्रेम दीवाना। लेखन ब्रजभूषण का है, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्वेकर। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:00 प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10:00 छाया गीत, आलेख एवं स्वर ममता सिंह का। 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात और 11:00 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का भाग 193।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ

जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आगाते।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज सुरों की वर्षा हो रही है। हमारे साथ हैं अनूप जलोटा जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद जी।
1: भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी, और हम आज उनसे जानना चाहते हैं कि उनके तमाम भजन लोग पसंद करते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें किन गायकों के गाए भजन पसंद आते हैं, और उन गायकों के बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को, उनके गाए भजन गा के हमें सुनाएं।
2: भजन सबने गाए हैं, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसने भजन ना गाए हो। और अब तो ये भी सिद्ध हो गया कि जो भजन है वो शास्त्रीय गायन का एक अंग है, क्योंकि जितने भी शास्त्रीय गायक हैं वो बंदिश गाने के बाद में आखिर में भजन ज़रूर गाते हैं, चाहे वो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हों, चाहे डी वी पलुस्कर जी हों, चाहे पंडित जसराज जी हों, या भीमसेन जोशी जी हों।

0: या किशोरी आमोनकर जी हों, सब भजन गाते हैं, गजल कोई नहीं गाता अपने प्रोग्राम के एंड में। इसका मतलब गजल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक का अंग नहीं है
1: जी।
0: लेकिन भजन है, नहीं तो कोई ना गाता, लेकिन सभी गाते हैं। तो भजन डीवी पलुस्कर जी ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो आज तक लोग गा रहे हैं।

0: भीमसेन जोशी जी, उनके भजन गांव-गांव में गाए जाते हैं
1: जी।
0: लोग अपने कार्यक्रम को उनके भजन से ही समापन करना पसंद करते हैं।

एक ऐसे कंपोजर जिन्होंने बड़े सुंदर भजन सबसे गवाए, श्याम तेरी बंसी, रविंद्र जैन जी।

तो ऐसे कोई गायक हैं ही नहीं जिन्होंने भजन अंग को न छुआ हो। इतने प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह साहब जिन्होंने गजलों को अमर कर दिया, उन्होंने जब भजन गाए तो सबका दिल जीत लिया।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बस आंखें बंद करके सुनते रहें और अनूप जलोटा जी हमें भजन सुनाते रहें, बस ऐसे ही लग रहा है। एक सवाल मेरे जहन में आया जब मैं ध्यान से सुन रही थी। नई पीढ़ी एक अलग तरह के संगीत और संस्कृति में गुम है, ऐसा क्या किया जाए? अनूप जी आप बताएं कि भजन की ओर उनका रुझान हो, उन्मुख हो।
1: बस ऐसे भजन गाए जाएं, ऐसी लागी लगन जैसे,
0: क्या बात है,
1: हे राम जैसे, शाम तेरी बंसी जैसे, तो यंग जनरेशन सुनने लगेगी। लेकिन बहुत मुश्किल गाएंगे तो नहीं सुनेंगे लोग। तो कोशिश यही की जाए कि सरलता सुगमता सामने आ जाए तो सब उसे प्रेम करेंगे
0: जी। अब अनूप जी चलते चलते आपकी किसी भजन का मुखड़ा हमें सुनाएं।

0: चित्र के जरिए। और अब वही घड़ी आ गई है जब हम समापन करते हैं, तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं ये कड़ी। कल फिर मिलेंगे संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ। सबको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
5: आप सुन रहे हैं भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं पूजा नारायणिया, आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, मन में नाचे मन की उमंगे। बेकसूर फिल्म से ये गीत है, आवाज़ लता मंगेशकर की है, एहसान रिजवी के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत।

बेकसूर फिल्म से अभी लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने गीत सुना। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म से। गीतकार हैं मोती, संगीतकार सी रामचंद्र, आवाज़ें लता मंगेशकर और चितलकर की। सुनिए ये गीत।

0: गली हो।
1: लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में आपने सुना नदिया के पार फिल्म का ये गीत। लीजिए अब सुनिए ये संदेश।
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम का गाया गीत। शकील बदायूनी के बोल हैं, तर्ज बनाई है नौशाद अली ने। फिल्म का नाम मेला।

मेला फिल्म से शमशाद बेगम का गाया गीत आपने सुना। अब सुनिए कमल के फूल फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, श्याम सुंदर का संगीत, और इस गीत को गाया है सुरैया ने।

कमल की फूल फिल्म से सुरैया की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं सरगम फिल्म का गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर और चितलकर ने। पीएल संतोषी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है श्री रामचंद्र ने।

0: सरगम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज़ों में पीएल संतोषी का लिखा गीत था और सी रामचंद्र का संगीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उमा देवी की आवाज़ में अनोखी अदा इस फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीतकार हैं नौशाद अली।

ये गीत था उमा देवी की आवाज में अनोखी अदा फिल्म से। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आग से, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में ये गीत। इस गीत को लिखा है बहजाद लखनवी ने और संगीतबद्ध किया है राम गांगुली ने।

है 16 बरस की, 16 बरस की भई उमरिया, 16 बरस की भई उमरिया। गोरे गोरे पाँव में झांझन, गोरे गोरे पाँव में झांझन, चाल करे बदनाम, होए होए चाल करे बदनाम, हाय हाय चाल करे।

कुंडल जैसे हाथ लचीले कौन न ले दिल थाम होए होए कौन न ले दिल थाम हाय हाय कौन न ले दिल थाम हाय हाय कौन

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आग से शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वरों में। अब आपको सुनवा रहे हैं बाबुल फिल्म का गीत। इसे गाया है शमशाद बेगम ने, शकील बदायूनी के बोल हैं, संगीतकार नौशाद अली।

बाबुल फिल्म से शमशाद बेगम का गाया गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया था नौशाद अली ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा यानी विनोद का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद के इस विचार से। स्वामी विवेकानंद का कथन है, मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की।

श्रोताओं, कार्यक्रम में इस सुविचार के बाद अब हम नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज 19 मई है। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 19 मई वर्ष का 139वां, लीप वर्ष में यह 140वां दिन है। साल में अभी और 226 दिन शेष हैं। 19 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नज़र डालें तो आज ही के दिन 2006 को भारतीय मूल के मलेशियाई उद्योगपति टी रविचंद्रन ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और आज ही के दिन यानी 19 मई 2008 को परंपरावादी मराठी थिएटर के पुरोधा विजय तेंदुलकर का निधन हुआ था। भारत व चीन के बीच नाथुला से व्यापार पुनः शुरू हुआ था आज ही के दिन 2008 को। और आज ही के दिन 2010 को भारत सरकार को 34वें दिनों से चले आ रहे 3G स्पेक्ट्रम के नीलामी से 67,718.95 करोड़ रुपए का शुल्क मिलना तय हुआ था। और आज ही के दिन 2011 को यानी 19 मई 2011 को 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। फिल्म मुनेर मानुस को राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कार किया गया है। इसके अलावा फिल्म दबंग को सर्वाधिक मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार दिया गया। यह था 19 मई का इतिहास। अब नजर डालते हैं उन व्यक्तियों के पर जो आज के दिन यानी 19 मई को इस दुनिया में पहला कदम रखा यानी जन्म लिया। इसमें पहला नाम आ रहा है 1824 को जन्मे नाना साहब का, जो सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। उनका जन्म आज ही के दिन 1824 को हुआ था। और आज ही के दिन जन्म हुआ था 1938 को गिरीश कर्नाड का, जो कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता रहे। उनका भी जन्म आज ही के दिन 1938 को हुआ था। आज ही के दिन जन्म हुआ था अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक रहे एस्किन बॉन्ड का। उनका जन्म आज ही के दिन 1934 को हुआ था। भारत के राष्ट्रपति रहे नीलम संजीवा रेड्डी का भी जन्म आज ही के दिन 1913 को हुआ था। भारतीय तमिल सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रहीं पी लीला का जन्म भी आज ही के दिन 1934 को हुआ था। और 1947 को जन्म हुआ था टीसी योहानन का, जो लंबी कूद के भारतीय खिलाड़ी रहे। उनका भी जन्म आज ही के दिन 1947 को हुआ था। उनका नाम था टीसी योहानन। और जन्म हुआ था आज ही के दिन 1999 को दीपक पुनिया का, जो भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान हैं और जो 86 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं। उनका भी जन्म आज ही के दिन 1999 को हुआ था, दीपक पुनिया का। अब हम नज़र डालेंगे उन व्यक्तियों पर जो आज के दिन इस दुनिया को छोड़ चले गए, अलविदा कहा गए। इसमें पहला नाम आ रहा है 1997 को निधन हुए शोम्भू मित्रा का, जो फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार रहे। शोम्भू मित्रा का निधन आज ही के दिन 1997 को हुआ था। प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री तथा तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन का भी निधन आज ही के दिन 1996 को हुआ था। आज के दिन निधन हुआ था टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का 1904 को। हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जन्म आज ही के दिन 1979 को हुआ था। और आज ही के दिन निधन हुआ था 2008 को विजय तेंदुलकर का, जो भारतीय नाटककार और रंग मंच कर्मी रहे। विजय तेंदुलकर, उनका भी निधन आज ही के दिन 2008 को हुआ था। श्रोताओं, ये रहा 19 मई के इतिहास। अब इसी कड़ी में एक सुन लेते हैं खूबसूरत सा गाना अरविंद सिंह और सौम्या वर्मा की आवाज में। संजोग श्रीवास्तव ने इसे लिखा है, सुनील बारी ने संगीत दिया है। एल्बम है हे महावीर बजरंग।

0: मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहा बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: अभी आपने सुना अरविंद सिंह और सौम्या वर्मा की आवाज में खूबसूरत सा गाना हे महावीर बजरंग एल्बम से। श्रोताओं, कार्यक्रम को देते हैं गति और नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। सासाराम जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर खड़ी डाउन 53212 पटना फास्ट पैसेंजर में अचानक आग लग गई, जिसमें इस ट्रेन की एक बोगी जलकर खाक हो गई। घटना सोमवार सुबह 5:30 की है, जब यह ट्रेन अपने निर्धारित समय 6:45 पर पटना के लिए खुलने वाली थी। तभी ट्रेन के इंजन से पांचवें बोगी से धुआं निकलना शुरू हुआ। जब तक रेलकर्मी वहां पहुंचते, बोगी में आग की लपटें निकलने लगी। देखते देखते पूरी बोगी आग की चपेट में आ गई, जिस कारण घटना के बाद 1:21 विलंब से खुली ट्रेन। पटना फास्ट पैसेंजर को 1:21 की देरी से रवाना किया गया। तब इसके इंजन और अन्य बोगियों को दोबारा जोड़कर दूसरे प्लेटफार्म 7 पर लाया गया, जहां से ट्रेन रवाना हुई।

हिंदू जागरण मंच रोहतास के जीवन रक्षक रक्तदान शिविर में जनसेवा का भाव उमर पड़ा। शनि जयंती के अवसर पर हिंदू जागरण मंच रोहतास की ओर से सोमवार को फजलगंज स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए मानव सेवा का संदेश दिया।

जनजातीय गरिमा उत्सव के अवसर पर नवहट्टा प्रखंड के चार जनजातीय बाहुल्य गांवों में 19 मई से 25 मई तक चिकित्सा शिविर आयोजन किए जाएंगे। इस संबंध में जिला कल्याण शाखा रोहतास सासाराम द्वारा सिविल सर्जन को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। नासरीगंज प्रखंड के परसिया पंचायत सरकार भवन पर मंगलवार को पहला सहयोग शिविर का आयोजन होगा, जिसको ले प्रखंड परिसर स्थित वीडियो कार्यालय से उक्त शिविर की तैयारी को ले समीक्षात्मक बैठक नोडल पदाधिकारी सह एसडीओ डीएसओ शशि शंकर कुमार ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को शिविर को लेकर दिशा निर्देश दिया। नारायण नर्सिंग कॉलेज के मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग विभाग ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें विषय के साथ कार्यक्रम आयोजित कर मनाया। इस दौरान सासाराम प्रखंड के नहौना गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। श्रोताओं, कार्यक्रम को गति देने से पहले सुन लेते हैं खूबसूरत सा और गीत। सुमित्रा देव वर्मन की आवाज़ में मनोज मुंतशिर और जावेद अख्तर के बोल हैं, रोचक कोहली और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म कोई जाने ना।

अभी आपने सुना सुमित्रा देव और वर्मन के आवाज़ों में खूबसूरत सा गीत कोई जाने ना फिल्म से। मनोज मुंतशिर और जावेद अख्तर के बोल थे, रोचक कोहलनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम को गति देते हुए नज़र डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। लगभग सभी अखबारों ने कुछ मिलीजुली खबरों को प्राथमिकता देते हुए पहले पन्ने पर जगह दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है, सम्राट बोले 20 दिन में दो नोटिस, 30 दिन में काम न हुआ तो सस्पेंड। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी पंचायतों में मंगलवार से सहयोग शिविर लगेगा, इस दौरान मैं सोनपुर प्रखंड के एक पंचायत में रहूँगा। शिविर में आने वाले आवेदनों का निपटारा 30 दिन में करना है, वरना 31वें दिन संबंधित अधिकारी कर्मी स्वतः सस्पेंड होंगे। वे सोमवार को अग्निशमन वाहनों एवं AI निर्धारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण व उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

प्रभात खबर ने भी उसी खबर को प्राथमिकता देते हुए सचित्र पहले पन्ने पर जगह दिया है और अपने तरीके से लिखता है, बिहार के औद्योगिक क्रांति और सुशासन के नए युग में ले जाने के लिए सरकार ने चौतरफा रणनीति तैयार कर ली है। सोमवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास, निवेश और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर कई बड़े ऐलान किए। 20 नवंबर तक 5,00,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य, बाहर रह रहे बिहारी लौटें, ये है सीएम का निर्देश। पटना सहित पूरे बिहार की करीब 40,000 दवा दुकानें 20 मई को बंद रखी जाएगी। इसमें राजधानी पटना के 7,000 दवा दुकानें शामिल हैं। इसकी ऑफिशियल घोषणा सोमवार को बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा जीएम रोड स्थित एसोसिएशन कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई।

अगली खबर लेते हैं दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण अपने तरीके से लिखा है, सीएम ने बिहारी उद्यमियों से की राज्य में निवेश की अपील। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजधानी स्थित गांधी मैदान में 80 अग्निशमन वाहनों तथा एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष को लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार अब सड़क, बिजली और मूलभूत सुविधाओं से आगे बढ़ रहा है। अगली खबर दैनिक जागरण की है, दैनिक जागरण लिखता है कि धूल धूल कर जली सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन की बोगी। सासाराम रेलवे स्टेशन पर सोमवार को सुबह प्लेटफार्म संख्या 6 पर खड़ी ट्रेन संख्या 53212 डाउन सासाराम पटना पैसेंजर की एक बोगी में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बोगी आग के लपेट से घिर गई। कुछ ही मिनटों में पूरी बोगी जलकर राख हो गई। एक बोगी का पिछला हिस्सा भी उसके चपेट में आ गया। इस खबर को सचित्र छापा है दैनिक जागरण ने और पहले पन्ने पर जगह देते हुए इस बात को लिखा है। लिखता है हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान लिखता है कि निर्माण कार्यों के प्राकलन की एआई से जांच अनिवार्य। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विभागों को विकास कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। सरकारी विभाग एआई से जांच कराएं, बगैर किसी भी अल्टीमेट की स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे। इस खबर को प्राथमिकता दिया है हिंदुस्तान ने और सचित्र अपने पहले पन्ने पर जगह दिया है।

अभी हमारे श्रोता प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुन रहे थे। आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय

0: ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे

0: नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद जागृति।

0: आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगा कर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है, नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 MHz पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। सुनते हैं एक देशभक्ति संगीत। इस गीत को हमने लिया है होटल मुंबई से। स्टेविन बेन ने इसे गाया है। कुमार के लिखे इस गीत को सनी इंदर ने संगीत दिया है। फिल्म है होटल मुंबई।

अभी आपने देशभक्ति संगीत को सुना होटल मुंबई फिल्म से। श्रोताओं, सुबह के 8:20 होने वाले हैं। अब हम सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:20 हो चुके हैं। सुनते हैं आप श्रोताओं के भेजे गए पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम पसंद आपकी का पहला गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है, फिल्म का नाम है अंजाम। सुनना चाहा है आप सबों ने। ताज, मोहम्मद अंसारी, गुलाब, साबिर राही, मेहराज जहां, आप सब हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा का। आप सबों ने सुनना चाहा है अंजाम फिल्म का ये गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

थी। आप सबों ने सुनना चाहे अनजान फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अलका सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में खूबसूरत सा गाना सुनना चाहे बादल फिल्म से, बोल समीर के हैं, अनु मलिक का संगीत है, फिल्म है बादल। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गाना फिल्म बादल से।

कार्यक्रम पसंद आपकी की अगली पेशकश आप सबों की फरमाइश पर। यह पत्र आया है पंडर कौड़ा से सरयद अमीनूर का और सरयद आदिल, सिमरन सरयद और फरजाना सरयद का। एक पत्र है अस्मिता रेडियो रिपोर्ट ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, मुरली छत्री, श्रीमती कविता छत्रिय, मिथिलेश, यदु, दशरथ साहू, कुमारी अंकिता जोशी, बेबी बैदेही जोशी, खंडवा मध्य प्रदेश से आप हैं अब्दुल गफार डावर।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करेगी।

0: जा रहा बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: कार्यक्रम की अगली पेशकश अभिजीत और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। देव कोहली के बोल हैं, अनु मल्लिक का संगीत है, फिल्म है BV No. 1। सुनना चाहे आप सब उन्हें। आप हैं थाना नोखा ग्राम कोन रोहतास से धनजी प्रसाद चौरसिया, गंगा सागर चौरसिया, सोनामती देवी, अर्चना देवी, राधे कुमारी, आराध्या कुमारी, सोनू कुमार चौरसिया। ये श्रोता हैं प्रफुल्ल चौक नहौना सासाराम से, पीयूष कुमार, पूजा, प्रशांत, सुशांत, शुभ कुमार, उत्तम सिंह राजपूत और पुष्पा सिंह। आप सबों ने सुनना चाहे BV No. 1 फिल्म का ये गाना अभिजीत और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में।

कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गाना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ों में। सुधाकर शर्मा ने इसे लिखा है, हिमेश रेशमिया का संगीत है, फिल्म है हेलो ब्रदर। सुनना चाहा है आप सबों ने। थाना चेनारी ग्राम पोस्ट खुरमाबाद बाजार वार्ड नंबर 5 से रामजी प्रसाद चौरसिया, लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया, भरत प्रसाद चौरसिया, सोनू कुमार चौरसिया और प्रियंका कुमारी। वहीं ग्राम खुरमाबाद से आप हैं अंजनी देवी, मुन्नी देवी, उषा देवी, कुसुम देवी, प्रियंका कुमारी, सोनू बाबू, सूरज कुमार, सुजल कुमार। ये श्रोता हैं जय हिंद तेंदुआ नबीनगर से गिरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, सुजीत और टुनटुन। इसी गाने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं प्रफुल्ल चौक नहाना से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। आप सबों ने सुनना चाहा है हेलो ब्रदर फिल्म का ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

फिल्म हेलो ब्रदर के इसी गाने के साथ दीजिए इजाजत। पत्र आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी से अपने रेडियो दोस्त विनोद को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों में हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की टुमरी बुजुर्ग पंचायत से करेंगे शिविर की शुरुआत। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों के नाम सूची से काटे जाएंगे। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में NH31 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर तथा बक्सर जिले में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की टुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम से शिविर का उद्घाटन करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पटना के नौबतपुर की चिरौड़ा पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल होंगे। सभी प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव भी संबंधित जिलों में आयोजित होने वाले शिविर में भाग लेंगे। इन्हें कम से कम 3 प्रखंडों के सहयोग शिविरों में उपस्थित रहने को कहा गया है। इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: सहयोग शिविरों में जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौजूद रहकर स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से राशन, पेंशन, आवास, मनरेगा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, सीमांकन, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से भी इन शिकायतों की सीधी निगरानी की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सहयोग शिविर के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित हो जाएंगे।
2: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
0: केंद्र सरकार ने प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों का नाम सूची से काटने का निर्णय लिया है। इनमें 21,10,000 से अधिक परिवारों के नाम काट लिए गए हैं, जबकि 14,00,000 से अधिक और संदिग्धों के नाम काटे जाएंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी

0: जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। सबसे अधिक 2,12,000 परिवारों के नाम पटना जिले में कटेंगे। प्रदेश में बैंकों का साख जमा अनुपात सीडी रेशियो पहली बार 60% से अधिक हो गया है। बिहार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार 60.21% का सीडी रेशियो हासिल किया है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में पटना में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकिंग समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में सरकारी और निजी बैंकों के स्तर से ऋण वितरण तथा प्राथमिकता क्षेत्रों में वित्तीय प्रवाह की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने तेल कंपनियों को पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया है। वर्तमान में पीएनजी के लिए राज्य में 31,774 आवेदन लंबित हैं। मुख्य सचिव ने अतिरिक्त मानव बल और संवेदकों के माध्यम से इन आवेदनों को मिशन मोड में निपटाने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन समूह की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने पीएनजी कनेक्शन की प्रगति के साथ साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की स्थिति और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी को लेकर किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति नहीं है। भूमि विवाद के बढ़ते मामलों और लंबित वादों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य सरकार ने बिहार भूमि न्यायाधिकरण में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी है। साथ ही न्यायाधिकरण में 5 नए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 74,434 किसानों का निबंधन हो चुका है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कृषि विभाग तथा भूमि और राजस्व विभाग के अधिकारी समन्वय बनाकर फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गति दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक एन के अग्रवाल अंगिका अकादमी और बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वे विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अकादमी के अध्यक्ष पद का दायित्व निभाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक दिवेश कुमार चौधरी को अंगिका अकादमी और बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक के पद पर नामित किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इस अवधि में कयाची और बक्सर में लू की स्थिति बनी रही। इन स्थानों पर तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कयाची प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बक्सर का अधिकतम तापमान 44.4, डेहरी का 44 और कैमूर का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं छपरा का 40.4,

0: नालंदा का 40 और पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में लू चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
1: दिनांक 19 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में एनएच 31 पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं हादसे में 6 अन्य घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर के कारण ये हादसा हुआ। सभी मृतक ऑटो सवार यात्री थे। हादसे के बाद मौके से भागने के क्रम में ट्रक ने सामने से आ रहे दो अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुर्घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने सभी मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर रोहतास जिले के धौड़ार थाना क्षेत्र में तिलोथू सासाराम मार्ग पर एक

0: से आ रहे दो अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुर्घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने सभी मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर रोहतास जिले के धौड़ार थाना क्षेत्र में तिलोथू सासाराम मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जाती है। पटना स्थित नियोजन भवन में आज पूर्वाह्न 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित मेले में 12वीं पास 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र के रानीपुर टेला में बालू माफिया पुलिस पर हमला कर दो जब्त ट्रैक्टर छुड़ाकर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कटिहार जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र के फरसरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला समेत दो तस्करों को मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। गुजरात टाइटंस भी अंतिम 4 में पहुंच गई है जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सीतामढ़ी के जानकी स्टेडियम में खेले जा रहे श्यामल सिन्हा अंडर 16 एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में गया ने बेगूसराय को 65 रनों से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। बिहार फुटबॉल एसोसिएशन ने निर्देशों की अवहेलना और संगठनात्मक नियमों के उल्लंघन के आरोप में पश्चिम चंपारण, सीवान, अररिया, गया, बेगूसराय, वैशाली, सहरसा, सुपौल और नालंदा जिला फुटबॉल संघों के सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश को प्रमुखता देते हुए लिखा है, निर्माण कार्यों के प्राक्कलन की एआई से जांच अनिवार्य। दैनिक जागरण ने लिखा है, पटना और सिवान में अपराधियों से मुठभेड़, दोनों के पैर में लगी गोली। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सम्राट बोले 20 दिन में 2 नोटिस, 30 दिन में काम नहीं हुआ तो सस्पेंड। प्रभात खबर ने राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखा है, बिहार में 3 और सैटेलाइट टाउनशिप बनेगी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, सहयोग शिविर आज, पंचायत में सुनी जाएगी फरियाद। आज अखबार लिखता है, अब स्कूलों में रोज होगी बच्चों के बैग की जांच, बच्चे का स्कूल बैग उसके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों में हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की डुमरी बुजुर्ग पंचायत से करेंगे शिविर की शुरुआत। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों के नाम सूची से काटे जाएंगे। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में NH 31 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर तथा बक्सर जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।

0: जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
1: जागो ग्राहक जागो।
2: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान।
2: अभी आपने सुना आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:06 हुए हैं। जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 9:10 पर हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका सुनेंगे और विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुनेंगे सुबह 9:30 पर। सुबह 10 हिंदी समाचारों के तुरंत बाद सुन पाएंगे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से कार्यक्रम आवाज। रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के करसेरुआ पंचायत के कुसुही गांव के लोगों से नाली गली बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए मिल रही सुविधाओं पर की गई बातचीत। संकलन एवं वाचन मुमताज अहमद का होगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी सुन पाएंगे सुबह 10:30 पर और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार सुनेंगे सुबह 10:45 पर। पूर्वाहन के 11 विविध भारती के कार्यक्रमों की तरफ चलेंगे और पुनः हाजिर होंगे आप सबों के सेवा में शाम 5:10 पर कार्यक्रम वंदन के साथ।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीत सुन पाएंगे शाम 6:00 से। भोजपुरी बुलेटिन समाचार शाम 6:05 पर। और किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे शाम 6:10 पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे, प्रायोजक होंगे कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत का समय होगा शाम 6:40 पर और गुड इवनिंग रोहतास सुन पाएंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम शाम 7:15 पर और पुनः आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे शाम 7:25 पर। ई मनपसंद ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम सुन पाएंगे शाम 7:50 पर और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का समय होगा शाम 8:45 पर। रात्रि 9:00 भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा सुनेंगे और महफिल में आज हम गज़ल सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और हिंदी एल्बम सॉन्ग्स रसरंग सुनेंगे रात्रि 10:00 से। रात्रि 10:30 पर समय होगा कार्यक्रम चित्रपट तराने का और अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान लगाएंगे रात्रि 10:55 पर। रोजाना की तरह अंग्रेजी हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 11:00 और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही 11:05 पर रात्रि में। सभा का समापन रात्रि 11:10 पर। अभी आपने सुना आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम गीत मालिका का पहला गीत अभिजीत के आवाज़ में, समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है और फिल्म है अंजाम।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म चांदनी से लता मंगेशकर और बाबला की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल हैं शिव हरि का संगीत है, फिल्म है चांदनी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
4: कार्यक्रम गीत मालिका के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। समीर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है, फिल्म है दाग।

फिल्म दाग के इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका से दीजिए इजाजत। नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अगला प्रसारण सुनेंगे विविध भारती से आज के फनकार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो की सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

दिल्ली में एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था। वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज

आसपास का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: एक बेमिसाल शायर
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर

0: रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम

0: को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों से पहले हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं, सुनते हैं कार्यक्रम आवाज़।

0: दोस्तों नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज के इस अंक में आपका स्वागत है। हम हैं आपके दोस्त मुमताज अहमद। दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है आम लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के कुसुढ़ी गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों सफाई क्यों ज़रूरी है, इसका आकलन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि जो इलाका साफ रहता है, नाली गली की सफाई एक अंतराल के बाद होती रहती है, उस क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। इसलिए दोस्तों हमें भी अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई पर ध्यान देते रहना चाहिए ताकि बीमारी फैलाने वाले कीड़े को पनपने का कभी मौका न मिल पाए। दोस्तों रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के करसेरुआ पंचायत के कुसुढ़ी गांव के लोगों से हमने बात की। कुसुढ़ी गांव नहर के किनारे अवस्थित है यानी बसा हुआ है, और जानना चाहा कि कुसुढ़ी गांव के लोगों को नाली गली बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए अभी तक क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आइए सुनते हैं कुसुढ़ी गांव के लोग अपने गांव में मिल रही सुविधाओं के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं।
1: नाम अपना बता दीजिए।
2: अमित कुमार सिंह।
1: गांव का नाम?
2: ग्राम कुसुढ़ी।
1: पंचायत बता दीजिए।
2: पंचायत करसेरुआ।
1: सबसे पहले आप अपने गांव की गली के बारे में बताइए। सभी गली बन चुकी है या कुछ बनानी अभी बाकी है?
2: सर गली बनी है सर।
1: सभी गली बन चुकी है?
2: हाँ सभी गली बन चुकी है।
1: कोई भी बाकी नहीं है?
2: नहीं सर गली तो बाकी नहीं है कोई।
1: जब आपके यहाँ लगभग सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है, गलियाँ बन चुकी हैं, तो आने जाने में परेशानी होती है कि नहीं? अब
2: आने जाने में सर कोई परेशानी नहीं होती है।
1: कोई भी परेशानी नहीं होती है?
2: नहीं सर।
1: नाली बनाई गई है आपके यहाँ गलियों में?
2: सर नाली बनी हुई है।
1: सभी गलियों में नाली बनी हुई है?
2: सर सभी गलियों में नाली नहीं बनी हुई है,
1: कुछ गलियों में बनी है।
2: जी सर जो मेन गली है उसी गली में बनी है।
1: जिन जिन गलियों में नाली बन चुकी है आपके यहाँ अभी तक, उन गलियों के लोगों के घर का पानी जो नाली बनी है उसमें निकल जाता है या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है?
2: नाली बनने के बाद भी पानी जमा हो जाता है।
1: आखिर क्यों जमा रहता है नाली बनने के बाद भी?
2: नाली बनने के बाद सर मतलब ये नाली का जो साफ सफाई होता है वो नियमित रूप से नहीं होता है, इसलिए सर।
1: सफाई नहीं होने की वजह से जमा रहता है?
2: जी सर।
1: जिन गलियों में नाली नहीं बनाई गई है अभी तक आपके यहाँ, उन गलियों के लोग अपना पानी कैसे निकालते हैं?
2: वहाँ के जो लोग होते हैं वो किसी माध्यम के द्वारा वो पानी का निकासी को मेन गली के माध्यम से, जो मेन नली है उस नली के माध्यम से पानी का निकासी करवाया जाता है।
1: अपने गली में कैसे निकालते हैं?
2: अपने गली में मतलब खान के रोड को साइड में नली पतला बना के उसको मेन नली से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो मेन नली में गिर जाती है और वहाँ से वो निकल जाती है ताल में।
1: गली में भी जमा रहता है पानी?
2: हाँ पानी सर गली में जमा रहता है।
1: तो फिर आने जाने में परेशानी होती है?
2: हाँ सर आने जाने में परेशानी होती है।

0: बिजली रहती है कि नहीं आपके यहाँ?
1: सर हमारे यहाँ बिजली रहती है।
0: बिजली का वोल्टेज कैसा रहता है?
1: सर बिजली का वोल्टेज सर सुबह में और दोपहर में तक तो ठीक रहता है, लेकिन सर शाम को बहुत लो वोल्टेज हो जाता है।
0: शाम में लो वोल्टेज हो जाता है?
1: जी सर।
0: बिजली बिल के बारे में बताइए, बिल कैसी आती है?
1: सर बिजली बिल तो सर ठीक है, अभी तो बिजली मुफ्त में मिल रहा है 120 यूनिट, तो 125 यूनिट तो वो तो ठीक है, बिजली में कोई दिक्कत नहीं है। बिल में
0: लाभ लोगों को मिल रहा है?
1: लाभ लोगों को मिल रहा है सर।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी आप लोगों को मिल रहा है?
1: सर नल जल योजना के अंतर्गत नल का तो पानी आता है सर, लेकिन कभी कभी मतलब वो खराब होने के चलते पानी का जो सप्लाई है वो बाधित हो जाता है।
0: कितनी बार पानी आता है?
1: सर पानी हमारे यहाँ दो बार आता है, एक सुबह में और एक शाम में।
0: पानी की क्वालिटी?
1: सर पानी की क्वालिटी तो सर हम कैसे बता सकते हैं, तो उसका जांच का वो सवाल है।
0: पीने के काम में लोग लेते हैं पानी?
1: जी सर पानी पीने के काम में लोग लेते हैं।
0: पीने के काम में लेते हैं। आपके गांव में कितना वार्ड है?
1: हमारे गांव में सर दो वार्ड है।
0: दोनों वार्ड में पानी सप्लाई हो रहा है?
1: दोनों वार्ड में पानी सप्लाई हो रहा है।
0: खेती करते हैं आप?
1: सर हम खेती सर नहीं करते हैं।
0: आपके घर के लोग?
1: हमारे घर के लोग खेती करते हैं सर।
0: करते हैं, कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
1: सर फसल मतलब अगर हम खरीफ की बात करें तो सर उसमें धान उगाते हैं, और सर रबी क्रॉप्स में सर गेहूं और कभी कभी चना भी होता है।
0: सिंचाई का मुख्य साधन क्या है आपके यहाँ?
1: सर हमारे यहाँ सिंचाई का मुख्य साधन जो नहर है वही है।
0: नहर का पानी जाता है?
1: जी सर नहर का पानी जाता है।
0: आप लोग जो अनाज पैदा करते हैं या आपके घर के लोग तो बेचते भी हैं?
1: जी सर हमारे घर के लोग अनाज पैदा करते हैं तो बेचा जाता है।
0: जब खेती करते हैं आप लोग तो खाद की जरूरत पड़ती है, दवा की जरूरत पड़ती है, बीज की जरूरत पड़ती है, ये सब आसानी से मिल जाती है?
1: बीज तो मिल जाता है, लेकिन सर खाद में थोड़ा सा परेशानी होती है।
0: खाद के लिए परेशानी होती है?
1: जी खाद के लिए सर परेशानी होती है, समय पर नहीं मिलता है।
0: आपके यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं?
1: सर हमारे यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है।
0: आप लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज कहाँ कराते हैं?
1: सर हम लोग सासाराम जाते हैं, सदर हॉस्पिटल।
0: सासाराम जाना पड़ता है?
1: जी।
0: आपके यहाँ से सासाराम लगभग कितनी दूरी पर पड़ता है?
1: करीब 6-7 किलोमीटर के आसपास।
0: आने जाने में कोई परेशानी होती है कि नहीं?
1: आने जाने में सर अपना साधन है, आने जाने में परेशानी नहीं होती है, रोड पक्की है नहर वाला।
0: आपके यहाँ कोई सरकारी विद्यालय है?
1: सर हमारे यहाँ सर सरकारी विद्यालय है।
0: कितने क्लास तक पढ़ाई होती है?
1: 5 तक पढ़ाई होती है।
0: 5वीं तक?
1: जी सर।
0: 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद आपके यहाँ के बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं?
1: सर आगे की पढ़ाई के लिए सर बच्चे जाते हैं, एक हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में सकाश स्कूल है, वो मतलब प्लस 2 तक हो गया है, वहीं जाते हैं सर।
0: कितनी दूरी पर पड़ता है सकाश?
1: सर सकाश करीब मोटा मोटी 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है सर।
0: आने जाने के लिए पक्की सड़क है स्कूल पर?
1: आने जाने के लिए सर पक्की सड़क स्कूल पर तक है सर।
0: आपके यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्डिंग कैसी है, पढ़ाई कैसी होती है?
1: सर हमारे यहाँ जो स्कूल है सर यहाँ पे क्योंकि लड़के हम लोग हमारे लड़के भी पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, तो सर मतलब लड़के तो जाते हैं लेकिन आउटपुट नहीं निकल पाता है सर। लड़के 2 क्लास में 3 क्लास में पढ़ते हैं लेकिन उनको जो बेसिक शिक्षा है तो बेसिक शिक्षा से भी मतलब उनको कुछ बुझाता नहीं है।
0: बिल्डिंग कैसे है आपके यहाँ के स्कूल के?
1: बिल्डिंग सर ठीक है, 2 बिल्डिंग है हमारे यहाँ।
0: स्कूल पर आने जाने के लिए पक्की सड़क है?
1: सर पक्की सड़क है स्कूल पे आने जाने तक।
0: पानी वगैरह की व्यवस्था स्कूल में?
1: पानी वगैरह की व्यवस्था है,
0: कोई दिक्कत नहीं होती?
1: कोई दिक्कत नहीं होती।
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सासाराम प्रखंड के कुसुड़ी गांव के लोगों से की गई बातचीत। कुसुड़ी गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत सुनने से पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। पंकज उदास और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके गीतकार हैं नक्श लियालपुरी, संगीतकार महेश किशोर, और फिल्म का नाम है एक ही रास्ता।

0: दोस्तों, अभी आप एक ही रास्ता फिल्म का गीत सुन रहे थे। आवाज़ें थीं पंकज उदास और कविता कृष्णमूर्ति की। अब आइए सुनते हैं सासाराम प्रखंड के कुसड़ी गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत।
1: अपना परिचय दे दीजिए।
2: नाम नवनीत कुमार सिंह,
1: ग्राम
2: कुसड़ी।
1: पंचायत भी बता दीजिए।
2: पंचायत करसरुआ पंचायत।
1: आप गली के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने यहाँ की?
2: सर, हमारे यहाँ सर मतलब आने जाने के लिए सुविधा ठीक है। गली बन चुकी है पर वहाँ पे पानी का जमाव रहता है गली में।
1: गली में पानी क्यों जमता है, आखिर क्या वजह है?
2: क्योंकि सर नली की सफाई नहीं होती है। नली को एक बार बना करके ढक दिया गया है और उसकी सफाई कभी नहीं होती है।
1: आपके यहाँ की सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है?
2: हाँ सर।
1: सभी गलियों में नाली भी बनाई जा चुकी है?
2: हाँ सर, सभी गली में नाली बनाई जा चुकी है।
1: बनी हुई नाली से लोगों का पानी निकल जाता है?
2: सर, पानी नहीं निकलता है इसीलिए तो रोड पे जमाव लगता है पानी का।
1: पानी नाली जाम होने की वजह से नहीं निकलता है या नाली सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बनाई गई है इसलिए नहीं निकलता है?
2: नहीं सर, सिस्टमेटिक ढंग से नली बनाई गई है पर उसके जाम के चलते रोड पे मतलब कि पानी का जमा हो जाता है।
1: आने जाने में लोगों को परेशानी होती है या नहीं?
2: हाँ सर, होती है। इसलिए कि जो ये नल जल योजना है, जो पाइप बिछाया गया है वो नली के जस्ट बगल में ही रोड पे ही बिछाया गया है, जिसके चलते वहाँ से पानी मतलब कि ऊपर की तरफ फ्लो करके और सड़क पे जमा हो जाता है पानी का।
1: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी सप्लाई किया जा रहा है आपके यहाँ?
2: हाँ सर, सप्लाई किया जा रहा है।
1: कितनी बार आता है?
2: दिन में दो बार।
1: पानी की क्वालिटी?
2: सर, पानी की क्वालिटी ठीक है, पीने लायक।
1: पीते हैं आप लोग?
2: हाँ सर।
1: जरूरत के हिसाब से पानी मिल जाता है?
2: हाँ सर, पानी जरूरत के हिसाब से मिल जाता है।
1: बिजली रहती है आपके यहाँ?
2: हाँ सर, बिजली रहती है।
1: बिजली का वोल्टेज?
2: सर, बिजली का वोल्टेज सर सुबह में ठीक रहता है, रात में मतलब थोड़ा डिम हो जाता है, इसलिए कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है सर, वो ट्रांसफार्मर पुराना है और ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कंप्लेंट किया गया है।
1: अभी तक बदलाया नहीं है?
2: नहीं सर।
1: बिजली के बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: सर, बिजली की बिल तो यहाँ पे रेगुलर जमा होती है।
1: कम आती है, ज्यादा आती है या ठीक आती है? लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं? 125 यूनिट फ्री का
2: बिजली जो 125 यूनिट है सर, सबको लाभ मिलती है।
1: सबको लाभ मिल रहा है?
2: हाँ सर।
1: आपके यहाँ कौन सी विद्यालय है सरकारी?
2: प्राथमिक विद्यालय सर।
1: प्राथमिक विद्यालय है, 1 से 5 तक पढ़ाई होती है?
2: हाँ सर।
1: उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए?
2: उसके बाद यहाँ से सकास जाते हैं, 10 मतलब कि वहाँ पे स्कूल 10+2 हो गया है, वहीं पे जाते हैं सकास।
1: सकास कितनी दूरी पर पड़ता है आपके यहाँ से?
2: यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है सर।
1: आप ही के ग्राम पंचायत में पड़ता है सकास?
2: हाँ सर, हमारे ही ग्राम पंचायत में पड़ता है।
1: सकास जाना पड़ता है बच्चों को?
2: हाँ सर।
1: आपके यहाँ जो स्कूल है उसमें आप ही के गाँव के बच्चे पढ़ने जाते हैं या और आसपास के गाँव के भी आते हैं?
2: नहीं सर, सिर्फ हमारे गाँव के ही बच्चे हमारे गाँव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं।
1: स्कूल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आने जाने का रास्ता ठीक है या नहीं? पानी की व्यवस्था रहती है कि नहीं?
2: आने जाने के लिए सर पक्की रास्ता है वहाँ पे स्कूल में, और पानी की व्यवस्था भी ठीक है, लाइटिंग की व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन शिक्षा में यहाँ पे कोई सुधार नहीं है।
1: बिल्डिंग
2: सर ठीक है।
1: समय से स्कूल खुलता है?
2: हाँ सर, समय से स्कूल खुलता है।
1: आपके यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं?
2: नहीं सर, हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है।

0: आप लोग पेशेंट का इलाज कैसे कराते हैं?
1: सर यहाँ से हमें करीब 7-8 किलोमीटर दूर सासाराम प्रखंड में जो सदर अस्पताल है वहाँ जाना पड़ता है।
0: अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाते हैं तत्काल?
1: सर सदर अस्पताल
0: सासाराम। आपके गांव से सासाराम आने जाने के लिए पक्की सड़क है?
1: हाँ सर पक्की सड़क है।
0: कोई दिक्कत नहीं होती है?
1: नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है।
0: खेती करते हैं आप?
1: हाँ सर खेती होता है हमारे यहाँ।
0: कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
1: सर हमारे यहाँ धान गेहूँ सभी फसल होती है।
0: सब्जी की खेती होती है कि नहीं आपके यहाँ?
1: हाँ सर सब्जी की भी खेती होती है।
0: सब्जी की भी होती है?
1: हाँ सर।
0: पटवन का साधन क्या है आपके यहाँ?
1: सर मेन नहर जो जगी वाला नहर है उसी है, वही मतलब उसी का मेन मतलब साधन है पानी के लिए।
0: नहर के किनारे आपका गाँव बसा है?
1: हाँ सर हमारा गाँव नहर के किनारे ही बसा है।
0: पानी सभी खेतों में चला जाता है नहर का?
1: नहीं सर हमारे गाँव से जो जो नहर गया है नहर से जो पश्चिम साइड में मतलब जितने भी एरिया है सब में पानी अच्छी से जाती है, पर जो पूर्व साइड में है नहर से वहाँ पे पानी की दिक्कत होती है।
0: आपका गांव तो नहर के पूर्व साइड में बसा हुआ है?
1: हाँ सर पूर्व साइड में बसा हुआ है हमारा गांव, पर पश्चिम साइड में हमारे गांव की एरिया है।
0: तो आने जाने के लिए नहर पर पुल है?
1: हाँ सर आने जाने के लिए नहर पर पुल है।
0: कोई परेशानी नहीं होती है?
1: नहीं सर कोई परेशानी नहीं होती।
0: अनाज पैदा जो आप लोग करते हैं उसको बेचते भी हैं?
1: हाँ सर बेचा जाता है।
0: आसानी से बिक जाता है?
1: नहीं सर आसानी से नहीं मिलता है।
0: कुसड़ी गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं और आइए एक और व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ये भी कुसड़ी के ही रहने वाले हैं। अपना परिचय दे दीजिए।
2: आयुष सिंह।
0: आयुष सिंह जी आप अपने गांव का नाम बता दीजिए।
2: कुसड़ी ग्राम पंचायत पंचायत करसेरुआ
0: प्रखंड बता दीजिए।
2: प्रखंड सासाराम।
0: आयुष जी आप अपने गांव की गली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी बन चुके हैं या कुछ बाकी भी रहे?
2: ना गली तो सारे बन गए हैं।
0: कोई बाकी नहीं?
2: नहीं गली सारा बन गया।
0: जब सारी गली बन चुकी है तो आने जाने में परेशानी होती है कि नहीं?
2: नहीं आने जाने में कोई परेशानी नहीं होता है।
0: नाली बनाई गई है आपके यहाँ?
2: नाली मेन जो गली है उसमें नाली सही है, बस ये ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं है।
0: बनी हुई नाली से पानी निकल जाता है घर का?
2: नहीं बोल तो रहे हैं ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं है,
0: पानी जमा रहता है।
2: हाँ जी जमा हो जाता है।
0: वजह क्या है?
2: वजह ये है कि जो नाली बनी हुई है कचरा फंस जाने के बाद उसको सफाई नहीं किया जाता है।
0: गांव के लोग सफाई नहीं करते हैं अपने अपने दरवाजे पर?
2: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नाली नाला जितना भी है सारा ढका हुआ है पटिया वटिया से, पटिया जो वो ढाल के वो रोड बनाते समय करते हैं उसे सारा ढका हुआ है, इसकी वजह से लोग साफ नहीं करते।
0: बिजली रहती है कि नहीं आपके यहाँ?
2: लाइट सही रहता है, कुछ ट्रांसफार्मर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वोल्टेज सही नहीं रहता है।
0: इसके लिए आप लोग कम्प्लेन नहीं किए हैं?
2: बहुत बार कम्प्लेन किए हैं, कम्प्लेन के साथ साथ ऐसा भी कभी कभी होता है कि लाइट बिगड़ गया तो कोई बनाने के लिए नहीं आया, बनाने के लिए नहीं आया ऊपर से मिस्त्री को अगर मान लीजिए हम लोग पर्सनली कॉल कर रहे हैं और एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहा है।
0: आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल है 1 से 5 तक पढ़ाई होती है?
2: हाँ जी।
0: तो उसके बाद बच्चों को कहाँ ले जाते हैं आप लोग पढ़ाने के लिए?
2: हम सकाश या करसेरुआ।
0: सकाश या करसेरुआ जाना पड़ता है?
2: हाँ सकाश 2.5 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से, तो करसेरुआ पंचायत है वो 4 किलोमीटर दूर है। कुछ ज्यादा लोग सकाश जाते हैं, कुछ लोग करसेरुआ भी जाते हैं। सकाश वाला स्कूल भी करसेरुआ से ही कनेक्ट है।
0: आने जाने में बच्चों को कोई परेशानी होती है कि नहीं?
2: सारे बच्चे पैदल ही जाते हैं।
0: पैदल
2: परेशानी तो होगा ही, और क्या होता है कि लोग रोड से जा नहीं पाते हैं, रोड से ज्यादा लंबा पड़ता है तो ज्यादा बच्चा खेत वेत से जाता है, खेत पकड़ के मान लीजिए तिरछा तिरछी गांव है तो चला जाता है। बरसात वगैरह में वही प्रॉब्लम होता है कि लड़का लोग को फिर घूम के जाना पड़ता है तो ज्यादा वो लंबा पड़ जाता है।
0: आपके यहाँ जो स्कूल है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
2: स्कूल सही है, स्कूल वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन में कोई सुधार नहीं है।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए मिल रहा है?
2: हाँ नल जल का पानी वगैरह सब सही है, पानी का टेस्ट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नल जल का मेंटेनेंस सही नहीं है, नल जल ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में अगर 2 दिन बिगड़ गया तो लोग परेशान होने लगते हैं। हमारे यहाँ पानी का जो लेयर है वो बहुत नीचे है जिस वजह से लगभग 30% लोगों का पीने से लेके मतलब नहाने तक का पानी उसी से यूज होता है, अगर वो 2 दिन बिगड़ गया तो लोगों को कहीं और से पानी भर भर के लाना पड़ता है।
3: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के करसेरुआ पंचायत के कुसुड़ी गाँव के लोगों से की गई बातचीत। अब आइए सुनते हैं दोस्तों एक और प्यारा सा गीत। ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसे हमने लिया है फिल्म नसीब से। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आवाज़ है दोस्तों लता मंगेशकर की।

दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आशा है सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मदद के साथ साथ जनता का सहयोग भी मिलता रहेगा। दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। तो साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज का ये अंक कैसा लगा, आप पत्र द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी के साथ आप अपने रेडियो दोस्त मुमताज को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। स्वर एवं संकलन मुमताज अहमद और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

अभी हमारे श्रोता कार्यक्रम आवाज़ सुन रहे थे। रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के करसेरुआ पंचायत के कुछोड़ी गांव से लोगों से नाली गली बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए मिल रही सुविधाओं पर की गई बातचीत। संकलन और वाचन था मुमताज़ अहमद का, प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब हम सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम लोक माधुरी में सुनेंगे कुछ भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं एक मदन राय से निर्गुण गीत। इस पारंपरिक गीत को भरत शर्मा व्यास ने संगीत दिया है। एल्बम है निर्गुण गीत। तो ये सुनते हैं मदन राय से एक निर्गुण गीत कार्यक्रम लोक माधुरी में।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: इस निर्गुण गीत के साथ कार्यक्रम को गति देते हुए सुनते हैं एक और मदन राय के आवाज़ में ही पारंपरिक गीत। भरत शर्मा ब्यास का संगीत है और एल्बम है बलम गईले झरिया।

अभी आपने सुना मुन्ना मदन राय की आवाज़ में कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। अब सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार। इसके अंतर्गत सुनेंगे कुछ भोजपुरी एल्बम गीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं भरत शर्मा ब्यास की आवाज़ में एक खूबसूरत सा भोजपुरी गीत। अशोक शिवपुरी ने इसे लिखा है, भरत शर्मा ब्यास ने संगीत दिया है और एल्बम है निमिया के डाढ़ मैया।

0: समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: कार्यक्रम रसधार की अगली पेशकश और आखिरी पेशकश नीतू कुमारी नूतन की आवाज़ में। नीतू कुमारी नूतन ने ही इस गीत को लिखा है और विनय बिहारी ने संगीत दिया है। एल्बम है छठी अइले नैहर, नीतू कुमारी नूतन के आवाज़ में।

अभी आपने सुना नीतू कुमारी नूतन को, एल्बम छठी अइले नैहर से। इसी गीत के साथ है भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम रसधार, अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूर्वाह्न के 11 बजने वाले हैं, अगला प्रसारण विविध भारती।

छठी अइले नैहर से। इसी गीत के साथ है भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूर्वाहन के 11 बजने वाले हैं, अगला प्रसारण विविध भारती से थोड़ी देर में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे ये गीत दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर के बोलों के साथ साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम रंग तरंग में, जो कि है पल के की आवाज में। महबूब के बोल हैं और के का ही संगीत है और लिया गया है पल एल्बम से।

0: सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज़ में असलम के बोल और लकी अली के संगीत के साथ ये सुमधुर सा गीत कार्यक्रम रंग तरंग में। चलिए चलते हैं, सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: में सिर्फ दर्द की रंज की बात है और फरियादें हैं, मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं।
1: हम सुन रहे थे ब्रीदलेस, शंकर महादेवन की आवाज़ में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को जावेद अख्तर ने इसे अपने बोल दिए हैं। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो नुमाइश एल्बम से है, पंकज उदास ने गाया और संगीतबद्ध किया है, जफर गोरखपुरी ने इसे बोल दिए हैं।

चांद मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है।

हम सुन रहे थे जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फयाज अनवर के बोलों से सजे हुए इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

हम सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है आंखों में तेरा ही चेहरा। आर्यन इस एल्बम से लिया गया है, जय वालिया ने इसे गाया है, जय वालिया ने ही इसे लिखा है और ललित ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर।

0: 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं यूफोरिया एल्बम से यह गीत जिसे गाया है पलाश सेन ने।

मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम से हम सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में ललित सेन के द्वारा लिखे गए और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवम्बर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
3: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आप सुन रहे हैं

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल होगा आपके बीच बस थोड़ी ही देर के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल में हम लेकर आते हैं किसी एक की याद, और आज हम लेकर आए हैं कवि प्रदीप के गीतों को। कुछ उन्होंने गाए हैं, कुछ उन्होंने किसी और गायन गायक की या गायिका की आवाज में हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कवि प्रदीप की आवाज में ये पहला नगमा।

वामन अवतार फिल्म से हम सुन रहे थे ये गीत प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोल और अविनाश व्यास के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में। ये गीत लिया गया है फिल्म मशाल से, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

विराम के पश्चात पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का अगला गीत, शंकर सीता अनुसुईया। इस फिल्म से प्रदीप के बोल हैं, प्रदीप की ही आवाज है और शिवराम का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे गीत पैगाम फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम यादों की महफिल में सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल में

तो कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारामती इस फिल्म से सुन रहे थे हम इस गीत को हेमंत कुमार की आवाज में, प्रदीप के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है, और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है और फिल्म है दो बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार, आशा भोसले की आवाज़ में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से। प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से। प्रदीप की आवाज़, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में, प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रति रोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत, और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना एक याद जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया, और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी, और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है, और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका, हमारा, हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नजर से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व, सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी, सच्चाई, नादानियां, उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत हार संघर्ष, नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी, परिवार, सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म, विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता आत्मनिर्भरता, करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है, प्रौढ़ावस्था स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र, शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं, और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बंधने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतन प्रवाह है। और प्रेम क्या है, किसी को पालने की लिए व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, क्या यह कर्तव्यों की वेदी पर किया गया त्याग है, या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पालना ही प्रेम मात्र माना जाएगा। ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही हैं। और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के

की बुनियाद को साथ लिए है। हम सभी मिट्टी से बने हैं, बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों से सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई 60 के बाद की पारी, जिसमें खुद को समेटने का वक्त शुरू होता है। शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल साफ। पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या हैं? यानी जीवन कितना सत्य है आपके लिए? ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है? बस इतना बताइए और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत।

जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल लुधियानवी की बोल, एस डी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्मों नेम जी से है, आवाज लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म। और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटखेलियां, मस्तियां और बहुत सारी शैतानियां। और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं। हम बड़ा छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में, किसी भी चीज को हम नहीं देखते हैं। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है।

चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ, जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने अपनों, अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद, नादानियां, शैतानियां, और फिर उसके साथ किताबों की दुनिया, दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है, और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नजरिया लेकर आते हैं। यही एक ठहराव है परिवार के रूप में होती है, जहां हंसी खुशी, सुकून, शांति दूरियों का संजोग बन जाता है, और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी, और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो जन्म से लेकर, हमारे कौश होता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है, अब वो सब बचपन फूलों सी हंसी, संगी, साथी, सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। बाली उम्र में किसी से नए ना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है, और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं। और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे हैं जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है शैशव काल की मुस्कान। किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। ना थी परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल, विवाह से गृहस्थाश्रम की ओर कदम पड़ते हैं। आज की एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्ता, तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया, तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहां शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था के सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत। वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोकों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है, ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है, जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले, यानी मैं भी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई। जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने जीवन को खुल के जिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश किवोल और सचिन देव बर्मन की आवाज बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली, ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीजों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गलती कर दी थी तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी

तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा है को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाइड याद करते हुए कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो उस पहले समझा मैं याद कर रहा हूँ, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती है। वैसे ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी जोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत जोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी, अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था, सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहां पे पतंग लेने ना गया हूं। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खोखो, धूम खेले हैं। क्या बात है, बचपन की यादें ताजा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे। क्या बात है, हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज सुन सकती हैं, और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है। सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था, वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई और बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई और शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज्यादा बिगड़ गई घर आने पर। बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर 7 टांके आए, बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियां की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पहिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियां हैं, और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।

बच्चे मन के सच्चे ये गीत हम सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तो जरूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियां तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे, पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियां मार पड़ेगी, इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नज़दीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो उन्होंने मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल नहीं गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी, और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थीं जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी, आहा क्या मज़ा आता था। तो ये बात तो बड़े मज़ेदार होती है, और कहते हैं कि माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं, बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है। स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले जमाने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंगी डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी, कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे, और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, वो मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी, कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते

देखिए बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर एक साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुंच गई। बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है, मैं नीचे उतरा। माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था। पड़ोस की गुलाटी अंकल के आते में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे। खाने से मतलब नहीं था, अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच, हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियां हुई। जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहां पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए अपनी शरारतें और शाबाशियां बचपन की जरूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े बहुत विशाल बन जाते हैं।

अमर प्रेम फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल आर डी वर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है। एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है। जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है, जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजने में है। किसी की फूलों जैसी हंसी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है, इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है। बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है। इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भुगता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं। हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहां पर इमली और आम के पेड़ थे। उन पर पत्थर मारते थे और फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहां रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की। बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी है, क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में। वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी वर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे TVS चलाई, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई बहन उनने भी ट्राई किया। गाड़ी रेस होती थी, ज्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सबने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत जरूर याद है, और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहाँ 20 किराएदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब बारूद सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था। सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे बारे में मिर्ची की दुर्गंध भर जाती थी। वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहाँ मानते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे। तब मम्मी मारती नहीं थी, कोई बात नहीं। हमारी श्रोता जो है कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदर कांड गाया था हारमोनियम बजाकर, हमें वो दिन याद आ रहा है, और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, 11 दिन थे, और ₹50 बहुत बड़ी चीज़ होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने

बड़ी तारीफ करती है, हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौढ़ावस्था इस उम्र तक आती आती यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हम उम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में। सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है। स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नकसीर फूट जाती थी। एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गईं, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा। ऐसे होते हम दो सहेलियों ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया, उसकी नाक पोंछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया और स्कूल की टीचर को भी बता दिया। और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारे कौशोता लिखते हैं कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे और सबसे सब किसे कहते थे हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त तो रस्सी को ऊपर कर देते थे, राह गिर गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़े। ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता सातवीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में। हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी। बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे, फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया। बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए, ये गीत में आवाज किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं, स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीजन से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं, हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो, किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रही हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि 16 बरस को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं, बताइएगा इसका उत्तर, आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर। और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है। इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भी।

0: हैं, उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं, और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं, और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम।

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता, आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ, सुरीला सफर में, सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

0: बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

दीक्षित से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर राज्यव्यापी अभियान का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित हो जाएंगे। सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति की मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से सीधी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। सहयोग शिविर का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के दानापुर अनुमंडल के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

0: क्रियाशील कर दिया गया है। सहयोग शिविर का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के दानापुर अनुमंडल के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बरौनी प्रखंड अंतर्गत भरत उच्च विद्यालय पिपरा देवस में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तेघरा के विधायक रजनीश कुमार, जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक मनीष समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इधर दरभंगा जिले में 24 स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कटिहार में आयोजित सहयोग शिविर के माध्यम से 2,975 शिकायतों का निष्पादन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सदर प्रखंड के भवाड़ा पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। वहीं अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिले के प्रभारी मंत्री सह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शिविर का उद्घाटन किया। अन्य जिलों में भी विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राजधानी पटना में अब पेट्रोल का मूल्य 110.02 रुपये प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 94.97 रुपये प्रति लीटर हो गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपालजी त्रिवेदी समेत बिहार के 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान करेंगी। भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा, जबकि डोमकच्छ नृत्य को मुख्य धारा में लाने वाले लोकप्रिय कलाकार विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इस अवधि में गया जी और बक्सर में लू की स्थिति बनी रही। इन स्थानों पर तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गया जी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में लू चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत प्रसार गांव में एक तालाब में बोरे में बंद 2 किशोरों का शव बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दरभंगा जिले के पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदन पट्टी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में चारों की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ऐसा नहीं करने पर मुतल्लिका अफसरान 31वें दिन खुद मुअत्तल हो जाएंगे। सहयोग शिविर में हासिल दरखास्तों के निपटारे की पेशरफ्त की निगरानी वजीर आला सेक्रेटेरिएट सतह से बराह रास्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवाम की सहूलतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल पर भी फॉल कर दिया गया है। नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी ने पटना के दानापुर डिवीजन के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्याग राजन SM समेत दीगर सीनियर अफसरान मौजूद रहे। बेगूसराय जिला के इंचार्ज व इमदाद बाहमी के वजीर रामकृपाल यादव ने बरौनी ब्लॉक के तहत भरत हाई स्कूल पिपरा दिवस में सहयोग शिविर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तेघड़ा के रुकन असेंबली रजनीश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट श्रीकांत शास्त्री, पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष समेत दीगर मुअज्जज अफराद मौजूद थे। इधर दरभंगा जिले में 24 मकामात पर सहयोग शिविर का इनेकाद किया गया। जिले के इंचार्ज वजीर व तामीरात सड़क के वजीर कुमार शैलेंद्र ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कटिहार में मुनक्किस सहयोग शिविर के तवस्सुस से 2975 शिकायतों का इजाला किया गया। जिला के इंचार्ज वजीर वफन व सकाफत के वजीर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सदर ब्लॉक के भवाड़ा पंचायत में सहयोग शिविर का इफ्तिताह किया। वहीं अरवल जिले के करपी ब्लॉक की परियारी पंचायत में जिला के इंचार्ज वजीर व पंचायती राज के वजीर दीपक प्रकाश ने कैंप का इफ्तिताह किया। दीगर अजला में भी सहयोग शिविर का इनेकाद किया जा रहा है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 90 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है। राजधानी पटना में अब पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 2 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आइंदा 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद तकरीब में मारूफ ज़रई साइंसदां और राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी समेत बिहार की 3 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज करेंगी। भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को फन के शोबे में उनकी ग्रां कदर खिदमात के लिए पद्मश्री दिया जाएगा, जबकि डोमकश नृत्य को अहम धारा में लाने वाले मारूफ फनकार विश्व बंधु को बाद अजमर्ग पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। रियासत के बेशतर हिस्सों में शिद्दत की गर्मी की सूरत हाल बदस्तूर कायम है। महकमा मौसमियात से हासिल जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10 अजला का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। इस दौरान गया जी और बक्सर में लू की सूरत हाल बनी हुई है। इन मकामात पर दर्जे हरारत मामूल से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गया जी रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर महकमा मौसमियात ने आज रोहतास, कैमूर और बक्सर अजला में लू चलने के अंदेशे के सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है। शेखपुरा जिला के अरियारी ब्लॉक के तहत परसार गांव में एक तालाब से बोरे में बंद 2 बच्चों की लाशें बरामद की गई हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट राकेश कुमार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दरभंगा जिले के पतौर थाना इलाके के तहत चंदनपट्टी गांव में एक शख्स ने अपनी अहलिया और 3 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हादसे में 4 की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए।

0: हर लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1230 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट जाएं, पता नोट करें www.bpsc.bihar.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC अधिनायक अनुदेशक यानी हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.bpssc.bihar.gov.in। इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के 190 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.indianramy.nic.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।
5: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य

0: अच्छे प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की

0: गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थलीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझकर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगने में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल के

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
3: वो जब याद

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
5: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
6: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
7: देना साथ मेरा ओ हम नवा,
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
8: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो, इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

नगमे के अंतिम गीत की ओर, जो कि है हमराही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो, नमस्कार।

0: सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का

0: की सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
2: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
1: अरे धन्यवाद, और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं।
2: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल,
2: है ना।
1: और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं, तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है, हमें जान रहा है,
2: ख्याल रखने वाला
1: जी।
2: है ना। विषय बता दे।
1: चलिए,
2: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम, यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
1: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी, वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना, वो हमें नहीं डांटते थे, वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये। बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
2: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे, है ना?
1: आंखों से डर जाते थे।
2: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना, तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
1: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं, है ना?
2: सचमुच
1: जगमगाते हुए
2: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
1: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
2: और
1: हम
2: उसको कचोटते रहता है
1: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना, ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कहीं हम वो अटक के न रह जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है, लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
2: अगर कि बताना चाहते हैं
1: कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए। और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए, तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे। इस कार्यक्रम में सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों

0: कुछ हुआ, उन्हें संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली, उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में गांव है रोपरखेड़ा वहां हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
0: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
0: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है
0: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है, विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल, और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो
0: योग्यता
1: है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है, फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
0: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
0: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल, और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों के
0: मुंह से। बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा। देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही।
0: हाँ।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी

0: हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच हम संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात है? हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो, होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारी आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है। उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं, दीपा, कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं। फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ के आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला, हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद कितनी मिलती है ना।

0: मोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई। हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं,
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं। माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं,
1: वैसे ही बने होते हैं। और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है, अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: माँ तो हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो, ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मियां डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त। और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम, जैसे कि पछतावा होने लगता है।
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में,
0: हाँ,
1: तब तो और भी बुरा लगता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो

0: इंसान को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना, तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर सवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
0: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं, तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूं, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
1: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है, तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें, आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्मक्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
0: और ऐसे में क्या होता है, निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े, और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
1: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
0: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देशे कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सोनाली, मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध

0: बोझ से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता
1: हो
0: है।
1: जाता है बिल्कुल। और आपने देखिए माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल
0: पर
1: जाता
0: ऐसा
1: है।
0: होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो अपराध
1: बिल्कुल,
0: बोध।
1: लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं भाई, पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई अगली बार आप मेहनत करके, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम, उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो मम्मी तो यहां भी
0: वो
1: काम आई
0: आग
1: है।
0: का तारा होते हैं ना बच्चे
1: हाँ इसीलिए
0: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार, हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था, अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था, मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूँ। क्या बात
1: क्या
0: है।
1: बात है। और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपया बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था, वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे, आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा, BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था, हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी, हाँ इधर दो नाती अपने परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं, इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है, ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया है
1: बिल्कुल
0: ना
1: सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो इस समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है, परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं, परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं,

0: और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
1: और तो अब गाना सुन ले
0: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में 7th बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सुन लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा, तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए, तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको ये गिफ्ट देना होगा।

0: तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश कर देते कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए हैं, फिर भी वे लोग

0: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
1: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
0: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थामकर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई

0: कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
0: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
1: नहीं कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
0: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुई?
1: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो, जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहां से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
0: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से,
1: जी,
0: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली।
1: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
0: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ।
1: जी,
0: अच्छा
1: जी।
0: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयां आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
1: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते हैं ना गाड़ियों की, लोगों की उस जमाने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
0: अच्छा,
1: और लता जी भी वहां थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भी आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां।
0: वाह वाह वाह भाई, ऐसा
1: कहां
0: है,
1: से कहां ये बात देखिए।
0: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहां, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
1: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
0: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
1: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहां, हम तो खड़े हैं यहाँ,

0: क्या है तुम्हारा, जिसने पुकारा उसी पे देने लगे जान।
1: दिल लेके जाते हो कहां।
2: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
3: जी।
2: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
3: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है
2: जी।
3: मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
2: लेवल
3: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बंधाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी, जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं
1: जी। अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे, अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं,
1: जी,
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और

0: जो गाने वाले थे वो भी, अभी मेरा एक गाना हुआ था फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे। हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना, और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है, इस समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत
1: इंस्टेंट फूड की तरह।
0: इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
1: जी हाँ,
0: हाँ
1: इतना पेशेंस रखते
0: जी
1: थे लोग,
0: जी जी
1: और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सकें
0: और जो
1: किसी गाने
0: इंग्लिश में
1: को।
0: कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था,
1: क्या बात है।
0: जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन, वो लेवल पे रिहर्सल, हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहां म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
1: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
0: जी जी
1: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने
0: जी
1: के
0: जी
1: बारे में बताया है
0: जी कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे, और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं, और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
1: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं
0: और
1: और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप?
0: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा, दादी अम्मा मान जाओ भाई। कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो
1: जी
0: बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो
0: गाना
1: कैसे
0: सुना।
1: मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाकया हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गई थी, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने कहा देख मुझे मंडी जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है। तो कहती है तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार? और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल, कॉलेज स्टूडेंट, सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है। बड़ा मजा आया, लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
0: और आपकी ये दोस्ती
1: अभी भी कायम है?
0: अच्छा।
1: जी हाँ,
0: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है। बहुत अच्छे लोग हैं, मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
0: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती है
1: जी,
0: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
1: जी, मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
0: अच्छा
1: जी हाँ, फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
0: लेकिन एक चीज है
1: जी,
0: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा लगा,
1: अच्छा लगा
0: और बहुत, देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
1: दस शुक्रिया
0: हमेशा भूलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
1: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीजों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
0: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती?
1: अच्छा, शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गजलों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में, तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है, तो इस टाइप की

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है, उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद
0: करते
1: में
0: थे,
1: रेडियो पे सुनते थे।
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए क्या बनना चाहेंगे आप?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है, और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है ये?
1: अच्छा चल रहा है, अभी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा आ रहा है?
1: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारोट, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है, कि एक गाना मेरा

एचएमवी का बहुत ही मशहूर हुआ था हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है। और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे। और ये गाना अभी लोगों ने बहुत पसंद किया, सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं,
1: जी
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं, और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में, फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की, और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो आप, नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की, तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है, कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई, और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था, और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहां के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए, फैज अहमद फैज की रचना, और बोल है आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कमल बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तज्जुब करेंगे, ऐसे ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलें थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी ग्रामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते हैं ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा 6-6 महीने शो की तैयारियां होती थी। आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूत का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने,
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
1: फिल्म को रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है, और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहां बात लेजर और सब पहुंच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहां पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहां आए हुए थे और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे।

0: इट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. तो ये एक एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का है. और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो.
1: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके.
0: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ. इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो. उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहां तुम्हारी खुशी वहां मेरी खुशी.
1: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
0: जी,
1: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
0: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ.
1: अच्छा.
0: और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं. तो समझे ना आप. तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है. बस स्टेज पे करूं मैं, या स्मॉल स्क्रीन पे करूं, या खुद गाऊं. अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले.
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का,
0: जी,
1: तो वहां कौन सी जगह जहां आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी, मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ. और आपको बताऊं कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग तहिटी, बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना. हमारी वहां का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो. इतनी खूबसूरत जगह है.
1: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए.
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने. पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार. उसमें 8 रचनाएं थी. और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था, आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए. और बोल हैं निगाहें नीची किए.

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं
1: जी।
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर
0: तो
1: सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे।
0: अच्छा।
1: मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दारुस्सलाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली, और वो भी एक किस्म का प्राइस था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने

0: कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड़ का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने। देवीदास
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टरन फ्रॉस्टडॉटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेटरी ओर्पो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की

प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 लेन वाले एक्सिस नियंत्रित डीएनडी सोहना राजमार्ग संख्या 148 NA का निरीक्षण किया। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 87,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 1,850

0: मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 लेन वाले एक्सिस नियंत्रित डीएनडी सोहना राजमार्ग संख्या 148 एनए का निरीक्षण किया। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 87,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 1,850 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 225 किलोमीटर लंबी 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सुरंगों और एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से सरकार दिल्ली एनसीआर के पूरे परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही है और इसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार कर रही है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन योजना के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये परियोजना हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित बुरी तरह बीमार या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। विराट कोहली, केएल राहुल और ईशान किशन भी टीम में शामिल है। जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन, और 5:30 पर सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवावाणी।

संध्या 6 बजे भोजपुरी लोकगीत सुनिएगा और 6:05 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना स्टूडियो, जहां से आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 7:30 पर और 7:50 पर हम आपके लिए पेश करेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद, सुनना नहीं भूलिएगा। दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या आप सुनते हैं 8:45 और रात्रि 9:00 भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा और 9:15 पर गजलों की महफिल आप सुनेंगे। विविध भारती मुंबई से प्रसारित आज के फनकार आप सुनेंगे 9:30 पर और रात्रि 10:00 हम आपके लिए पेश करेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग। सदाबहार फिल्मी नगमे सुनिएगा चित्रपट तराने कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर और सभा का समापन होगा 11:10 पर दिल्ली से प्रसारित समाचारों के बाद। तो श्रोताओं, यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, लीजिए सुनिए भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन।

किसान भाई अपना प्रसारण सुनेंगे किसान वाणी 6:10 पर। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है अवधेश कुमार शर्मा की बातचीत, गर्मी की जुताई से लाभ, अलावा इसके हरी खाद कैसे तैयार करें और सरकारी जमीन का अतिक्रमण न करें, इन बिंदुओं की भी विशद चर्चा की जाएगी।

बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान राम, जानकी जी और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। रास्ते में नदी पार करनी थी। केवट पहले से ही अपनी नाव लिए खड़ा था। उसे मालूम था आज प्रभु आ रहे हैं, आज सेवा का अवसर मिलेगा और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। प्रभु पहुंचे, केवट ने स्वागत किया। प्रभु ने कहा, केवट हम लोगों को उस पार उतार दो। केवट ने कहा, प्रभु आपका सेवक हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। प्रभु ने कहा, क्या शर्त है? केवट बोला, प्रभु पहले अनुमति दें कि मैं आपके चरण पखार लूं। मैंने सुना है आपके चरण किसी पत्थर को लग गए थे तो पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। प्रभु मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक ही नाव है बस, और वो भी मेरी जीविका का सहारा है। इसको कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, समझ गए केवट क्या चाहता है, अनुमति दी। केवट ने प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया और ले चला उस पार।

उतार दिया उस पार। प्रभु ने सोचा केवट का तो यही काम है, यह व्यवसाय है, इसको मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन बनवासी राम देते क्या, कुछ था ही नहीं। सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका उतार के केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। प्रभु ने कहा ले लो केवट, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारी मजदूरी है। केवट ने कहा प्रभु एक विशेष कारण है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। प्रभु ने कहा क्या कारण है? केवट बोला प्रभु एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और केवट का व्यवसाय एक कैसे हो गया। केवट ने कहा प्रभु है, और बोला

प्रभु एक ही व्यवसाय है, एक ही काम है। मैं भी नाविक हूँ, आप भी नाविक हैं, थोड़ा ही सा फर्क है। मैं इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूँ और आप इस भवसागर के मल्लाह हैं।

0: अभी आपने अनूप जलोटा के स्वर में यह भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इस संदेश के पहले आपने रसिक पूरन पागल की आवाज में भक्ति रचना सुनी और इन्हीं भक्ति रचनाओं के साथ ही वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा वाणी।

यो वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम कई बिंदुओं पर नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेरे मन में एक बात आ रही है वो है कि जो तापक्रम है आप हमारे आसपास का, आज का तापमान भी मैंने देखा वो काफ़ी ऐसा कुछ है जिसमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है और थोड़ी सी भी लापरवाही यदि होती है तो गंभीर परिणाम होते हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो अब जैसे मान लीजिए कल जो है 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा, आज 45 डिग्री तक है। जी हाँ, जैसी खबरें आ रही हैं तो अब ऐसी परिस्थिति में हमें एहतियात तो बरतना ही होगा ना, हमेशा अपने आप को बचाने की सोचें। आप चाहे जहाँ भी हों, खेल के मैदान में हों, ऑफिस में हों, खेत में हों, घर में हों, बाहर जहाँ कहीं भी हों, आप अपनी सेहत से थोड़ी भी समझौता न करें, क्योंकि ये तापमान हमारे शरीर को और हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाता है। यदि आप बाहर हैं, हालांकि उचित तो यही होगा कि 12 बजे के बाद और 3 बजे तक, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं, इस समय में कम से कम घर से बाहर निकलिए। ज़रूरत ना हो तो ना निकलिए, घर में रहें, जहाँ आप हैं ठंडा में छाया में बने रहें। तो ये भी एक एहतियाती कदम है कि भाई हम 12 बजे से 3 बजे तक विश्राम कहीं भी करेंगे, सुरक्षित जगह पर। तो ये एक चीज़ हुआ। दूसरी कि अगर निकलना ही है तो भैया सर पर तौलिया रखना बिल्कुल मत भूलिए, गमछा रखना बिल्कुल मत भूलिए,

आँखों पर चश्मा, काला चश्मा, काले शीशे का चश्मा अगर आप पहनते हैं तो आप पहनिए, क्योंकि रेडिएशन से आँखों को भी बचाना है। और हाँ, स्वच्छ पानी, शीतल पानी आप ज़रूर पिए। शीतल पेय पदार्थ बाहर वाले नहीं, घर में जो बनता है आप वो पिए। सौंफ का पानी है, मट्ठा है, दही है, ये चीज़ें तरावट कही जाती हैं। और खरबूज, ललमी, ये सब तो चीज़ें हैं ही हैं, ककड़ी, खीरा, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर को पानी भी सप्लाई करती हैं, पानी की आपूर्ति करती हैं, और हम एकदम सहज और तरल बने रहते हैं। तो इन चीज़ों पर भी ज़रा ध्यान दिया जाए, पशु पक्षियों को भी बचाने के। आज मैंने अपनी आँखों से देखा एक कबूतर एक नल के पास जो पानी टपकते रहता है टप टप टप टप, उससे अपनी प्यास बुझा रहा था। तो भाई देखिए, वो भी हमारे अपने अंग हैं, पशु पक्षी हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सा हैं, हमारे साथी हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि अपनी तो हम रक्षा सुरक्षा कर ही लेंगे, पशुओं की और पक्षियों की भी जो हमारे आसपास रहते हैं। लोग प्याऊ लगवाते हैं भाई शहरों में कि आने जाने वाले राहगीर को प्यास लग जाए तो एकदम बिल्कुल तत्काल पानी पी लें। तो ये व्यवस्था जो है, शीतल पानी घड़े में लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ घड़ा, सुंदर भी लगता है देखने में, और प्यास बुझाई गई, वहाँ पर गुड़, बतासा जो भी अगर वो आप रख दें तो और बेहतर, स्वाद भी बदला, आनंद आ गया, आने जाने वाले को हंसते चले गए। इसी तरह से पानी की व्यवस्था पक्षियों के लिए भी, दाना की व्यवस्था आजकल, आज की इस भीषण गर्मी में, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है कि हम अपने आप को बचाएं और मौसम के दुष्प्रभावों से हम अपने आप को बचाएं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद ही और भी कोई चीज़ बनी है। तो चलिए हम और भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक गीत सुन लेते हैं।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: जी हाँ, आपने गीत सुना और गीत के साथ एक संदेश भी सुना। जी हाँ, हम फिर से दोहरा देते हैं और बता देते हैं कि याद दिला देते हैं आपको, जानते तो आप होंगे ही होंगे कि 6:05 पर संध्या 6:05 बस थोड़ी ही देर बाद आप आकाशवाणी के पटना केंद्र से अब प्रतिदिन भोजपुरी में प्रादेशिक समाचार सुनाया जा रहा है, तो आप वो भी सुनिए, भोजपुरी बुलेटिन समाचार 6:05 पर। तो ये एक सूचना भी है और सबसे है कि अपनी जबान में, अपनी बोली में, अपनी भाषा में जो कार्यक्रम आता है वो भाई मिट्टी की आवाज़ है ना, वो मिट्टी की भाषा है, तो अपने जड़ों से जुड़ने के लिए, अपनी विरासत से जुड़िए और अपनी अपने व्यक्तित्व को संवारिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी भाषा पर विशेष ध्यान दें। तो चलिए, भोजपुरी में आप समाचार भी सुनेंगे 6:05 पर नित्य प्रति। जी हाँ, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। और खेल तो हमारी ज़िंदगी के अभिन्न अंग हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। खेलों से हमारा कायिक विकास भी होता है। कायिक विकास का मतलब कि बॉडी बिल्डिंग खेलों से होता है और बहुत सारी चीज़ें हमको खेलों से मिलती हैं। अनुशासन भी वहाँ सीखते हैं, एकता का बोध हमको होता है, कैसे सामंजस्य बैठाएँ, कैसे तालमेल हो, इसका भी बोध होता है खेलों के मैदान से। क्या नहीं सीखते हैं हम, समाज सेवा, नेतृत्व का गुण भी आता है खेलों से। अरे भाई, कोई कैप्टन होगा ना उसमें और खिलाड़ी भी होंगे ना, तो ये एक टीम जो पक्की बन जाती है खेलों में, तो एक टीम स्प्रिट जिसको बोलते हैं वो भी हमको खेलों से मिलती है। ऐसा केवल नहीं है कि बस खेल खेलना ही है, उसमें कई चीज़ें हमको मिलती हैं। इसी से खेलों को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा माना जाता है। कौन वैसा बच्चा होगा, कौन हम में से होगा जो खेला नहीं होगा? कबड्डी, धुआ, चीका जो पारंपरिक खेल थे, बहुत सारे चीज़ थे, सतघरवा, गोटिया, ये बहुत सारे खेल हम लोग बचपन में खेले हैं। तो खेलों से हमारा लगाव है बचपन से ही और ज़िंदगी भर खेलों से लगाव रहता है। कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, शाम को वॉलीबॉल या अपना बैडमिंटन खेल रहे हैं, सेहत उससे सुधरती है। लेकिन असल बात यह है कि खेलों में निष्पक्षता की बड़ी ज़रूरत है। अब आप देखे होंगे, कहने की बात नहीं है, कहीं कहीं खेलों में ऐसा लग जाता है कि भेदभाव या कम ईमानदारी बरती गई, पारदर्शिता जिसको होनी कहते हैं वो कम दिखाई पड़ी। तो भाई देखिए, इस चीज़ को लेकर के एक खास दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जुलाई 2024 में मान्यता दी एक खास दिवस की, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड फेयर प्ले डे, विश्व निष्पक्ष खेल दिवस। खेल दिवस नहीं, निष्पक्ष खेल दिवस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य ही है कि खेलों में ईमानदारी, सम्मान, समानता और गैर भेदभाव को बढ़ावा मिले, ताकि कोई ऐसा न सोचे कि भाई हमारे साथ भेदभाव हुआ या हम जीत रहे थे या जीत चुके थे। नहीं नहीं नहीं, जो जीता है वो जीता है, जिसकी हार हुई भाई हार हुई है। प्रेम का चीज़ है खेल, खेल तो इसीलिए खेले ही जाते हैं कि मैत्री संबंध स्थापित हो। दो ही पहलू है ना, दो ही पक्ष है ना, हार चाहे जीत दोनों का ही सम्मान होना चाहिए, लेकिन हाँ तब है कि उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। तो उद्देश्य वही मैत्रीपूर्ण, समावेशी और सम्मानजनक खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, जिसमें डोपिंग और हिंसा का कोई स्थान न हो। यह पहल पैंथलोन वाल्नो

के द्वारा हुई थी और 1963 में जीन बोरोत्रा द्वारा निष्पक्ष खेल समिति की स्थापना की गई थी। लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन, शांति और सतत विकास, लक्ष्यों को खेल के माध्यम से हासिल करना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि खेलों में पारदर्शिता बरती जाए, उसी के लिए ये खास दिवस है जो कि 19 मई को ही मनाया जाता है हर साल। तो आज 19 मई है और आज के दिन ये खेल दिवस, निष्पक्ष खेल दिवस, विश्व माने दुनिया भर में निष्पक्ष खेल दिवस के रूप में ये आज का दिवस मनाया जा रहा है। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में अगर हम खेलों से जुड़े हों तो ये एक संकल्प भावना होनी चाहिए मन में कि इसमें निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। खेल की आत्मा तभी जीवित है जब उसमें पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, जब उसमें निष्पक्षता है, ईमानदारी है। बारी तो आती ही है, जो हार गया उसको जीत की बारी आनी है, तो इसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। खेलों को आनंद के साथ खेलिए, एकता के साथ खेलिए। चलिए एक और गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ, RBI का

तहे जानकार बनिए, सतर्क रहिए, क्योंकि साइबर क्राइम्स जो हैं वो अक्सर खबरों में होते हैं और थोड़ी सी भी चूक होती है तो बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती का जन्मदिन है और वो है हमारे देश के छठे राष्ट्रपति रह चुके नीलम संजीव रेड्डी। आपका जन्म आज ही के दिन यानी 19 मई 1913 को हुआ था। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनेता और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। तो हम आज श्रद्धा के साथ, आदर के साथ आपको नमन करते हैं। और प्रारंभिक जीवन और स्वतंत्रता संग्राम पर अगर हम नज़र डाल लें इनके कैरियर पर, तो 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले के इल्लूर गांव में एक साधारण कृषक परिवार में आपका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा आपकी मद्रास और अनंतपुर में हुई। 1929 में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। संघर्ष के दिनों की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने विद्यार्थी सत्याग्रह में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई वर्ष जेल में बिताए। राजनीतिक सफर को यदि हम देखें तो 1946 में मद्रास विधानसभा के लिए चुने गए और 1947 में संविधान सभा के सदस्य भी बने। 1956 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद वह राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और 1967 में लोकसभा के लिए चुने गए और स्पीकर का पद संभाला। 1977 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान वह सर्वसम्मत से भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए और उपलब्धि यह है कि वह भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्रियों माननीय मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी और इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने पैतृक गांव ही लौट गए। 1 जून 1996 को 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ और उनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के बारे में यदि हम और भी जानना चाहें तो इससे और भी प्रेरणा मिलती है। तो आज हम एक बार फिर से आपके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और श्रद्धा के साथ याद करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। चलिए एक और गीत हम सुन लेते हैं, फिर आगे और बातें होंगी।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: चलिए एक बार और

आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के तहत भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता की। भारत और न्यूजीलैंड ने 27 अप्रैल 2026 को, जी हाँ, इसी साल अप्रैल महीने में 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हस्ताक्षरित किया, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यात को सभी टैरिफ लाइनों पर 100% शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी, जबकि न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर भी शुल्क कम या समाप्त किया जाएगा। समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार हैं कि 20 अरब अमेरिकी डॉलर की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के साथ समझौता MSME सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में नए अवसर प्रदान करेगा। कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ होगा। यह समझौता हिंद प्रशांत सहयोग को मजबूत करने और 2047 तक भारत की वैश्विक व्यापार पहुंच का विस्तार करने के लिए है। तो ये चंद बातें थीं और भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता के संबंध में। तो अब घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि हमें आपसे यहीं पर आज्ञा लेनी होगी। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण सुन रहे थे, युवावाणी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं एक लोकगीत। लेकिन हाँ, 6:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी में समाचार। हम अपने केंद्र से उसे रिले करेंगे, तो सुनना नहीं भूलिएगा। फिलहाल सुनते हैं ये लोकगीत।

0: मालती देवी से अभी आप शिव भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में यानी ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रवुआ सभे संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रदेश में आम लोगन के समस्यान के तुरंते समाधान खातिर आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर के आयोजन कैल गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद सारण जिला के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होके ई राज्यव्यापी अभियान के उद्घाटन कैले। श्री चौधरी कहले कि शिविर में मिलल शिकायतन के समाधान ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के भीतर हर हाल में हो जाए के चाही। ऐसा ना कैला पर संबंधित अधिकारी 31वां दिन अपने आप निलंबित हो जाइए। सहयोग शिविर में आवे वाला आवेदनन के निपटारा के प्रगति पर मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से सीधे नजर रखल जाए। उ जनता सबके सुविधा खातिर हेल्पलाइन नंबर 1100 आ सहयोग पोर्टल भी चालू कर देहल गइल बा। इस सहयोग शिविर के आयोजन हर महीना के पहला आ तीसरा मंगलवार के कैल जाए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पटना के दानापुर अनुमंडल के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर के उद्घाटन कैले। एह मौका पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM समेत और दूसर वरिष्ठ अधिकारी लोग मौजूद रहे। बेगूसराय जिला के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव बरौनी प्रखंड के भरत उच्च विद्यालय पिपरा दिवस में सहयोग शिविर के उद्घाटन कैले। बिहार के और दूसर जिलवन में भी अलग अलग पंचायतन में ऐसन शिविर के आयोजन कैल जा रहल बा। तेल बेचे वाली कंपनियन पेट्रोल और डीजल के कीमतन में करीब 90 पैसा प्रति लीटर के बढ़ोतरी कैले बाड़ी सब। राजधानी पटना में अब पेट्रोल के दाम 110.02 रुपया प्रति लीटर और डीजल के दाम 10.94.97 रुपया प्रति लीटर हो गई बा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आवे वाला 25 मई के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक आ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी समेत बिहार के 3 गो विभूतियन के पद्मश्री सम्मान से नवाजी हैं। भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती के कला के क्षेत्र में उनकरा उत्कृष्ट योगदान खातिर पद्मश्री देहल जाई। जबकि डोमकच नाच के मुख्य धारा में लावे वाला लोकप्रिय कलाकार विश्वबंधु के मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कैल जाई। राज्य के ज्यादातर हिस्सा में भयानक गर्मी के हालत बनल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक आज भभुआ और रोहतास जिला में लू के चलते जनजीवन पर बड़ असर पड़ल बा। पिछला 24 घंटा के दौरान गया जी राज्य के सबसे गर्म जगह रहल, जहां ज्यादा से ज्यादा तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कैल गई। विभाग अपना अनुमान में कहले बा कि रोहतास भभुआ बक्सर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सा में अगला कुछ दिन ले गर्मी से राहत मिले के कोनो आसार नहीं खे। वही जे चक्रवाती परिसंचरण बने के कारण राज्य के उत्तर वाला हिस्सा में मौसम बदले के संभावना बा। यही बीच पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य आ उत्तर पूरब के इलाका में आंधी पानी हो सकेला। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति DLED संयुक्त परीक्षा के तारीख के घोषणा कर देले बिया। समिति की ओर से जारी कैल

0: कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा 8 जून से लेकर 22 जून तक आयोजित कल जाय। ई परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में लिहल जाय। परीक्षा खातिर सब प्रमंडलीय मुख्यालय में सेंटर बनावल जाय। बोर्ड कहले बा कि अभ्यर्थी लोग 28 मई से अपन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकत बाड़े। भारतीय रेलवे 54 किलोमीटर लाम किउल झाझा तीसरी रेल लाइन परियोजना के मंजूरी दे देले बिया। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव बतौलन कि हावड़ा दिल्ली रूट पर क्षमता बढ़ावे खातिर 962 करोड़ रुपया के लागत से ई रेल लाइन बनावल जाय। ई प्रोजेक्ट पूरा भइला से यह भारी भीड़ भाड़ वाला रेल खंड पर भारी लोगन औरी मालगाड़ी सबके आवाजाही ढेर आसान औरी समय पर हो सकी। सारण पुलिस नशा मुक्त सारण अभियान के तहत जिला के अलग अलग जगहन पर छापेमारी क के भारी मात्रा में देसी औरी विदेशी दारू जब्त कैले बिया। इस संबंध में 14 गो तस्करण के गिरफ्तार कैल गैल बा। पूरब मध्य रेल के सोनपुर मंडल के अंतर्गत अलग अलग स्टेशनन औरी ट्रेनन में मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलावल गई। इस दौरान बिना टिकट यात्रा करत लोगन से 25 लाख रुपया से ढेर के राशि जुर्माना के रूप में वसूल कैल गई। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का प्रसारण किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता भाई बहन लोग के रज्जू भाई के तरफ से नमस्कार। आज झुनी बहन रौरा के भी नमस्कार।
1: नमस्कार रजू भाई और सब श्रोता भाई बहन लोगों के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम। रजू भाई
0: जी,
1: देखी कहल गई बा कि सफलता एगो जौन चीज बा
0: जी
1: वो एक दिन में कोई के ना आवे। हम सोचे कि मैंने जैसे पेड़ लगावा तो नहीं तो 5 साल के होता तब जाके फल देता
0: जी।
1: जैसे रौरा कोनो सामान है जैसे कोनो फसल लगावनी तो ओकर एगो टाइम लिमिट बा कि मतलब 1 महीना में होई 2 महीना में होई 4 महीना में तैयार होई तो ओकरा खातिर किसान के देखी बहुत मेहनत करे के पड़े बा। उ 4 महीना के दौरान ओकरा के कब ओकरा में खाद देवे के बा, कब ओकरा के पटवन करे के बा, कब ओकरा के निकाई गुड़ाई करे के बा, तब ना रौर फल तैयार होता। वो
0: जी कहल भी गई बा कि समय पात तरुअर फले केतक सिंचु नीर।
1: हाँ,
0: मतलब अपना समय पर ही सफलता
1: मिले
0: या फल मिलेला। जी
1: तो देखी सफलता के जौन कहानी बा कि मतलब कौनो चीज बाटे जैसे पत्थर भी बाटे तो करा के तरासा तरासा तू भगवान के मूर्ति बन जाता है और देखी कहाँ पूजनीय हो जाता है।
0: जी देखी जब ये बात कहनी तो एक समय के बात है ना कि एगो जंगल में एगो गुलाब रहे अपन अपना में खिल रहे। ओकरा लगत रहे कि जे भी जाता हमरा सुगंध के ले रहल बा, हमरा के सब कोई बहुत सुंदर नजर से देखता।
1: हाँ, अपना पर थोड़ा ही हो गए,
0: घमंड हो गया ओकरा। तो ओकरा बगल में एगो पत्थर के टुकड़ा पहाड़ से टूट के गिर गए। तो उ पत्थर के टुकड़ा के देख के गुलाब के लगल कि हम हमरा सामने ही काबा। तो बोलस कि अरे भाई तारा गिरे के रहे तो बगल में जाके गिरा। लेकिन समय भी कभी कभी बदल जाला आदमी के, ऐसे अपना पर घमंड ना करे के चाहिए। आ देखी जौन सफलता के बात कहनी ही ओकरा संगे ईश्वर के ऐसा कृपा भइल कि कुछ मतलब कलाकार मूर्ति कलाकार

0: अरे जो पत्थल से मूर्ति बनावत रहे वो रास्ता से जात रहे आ देखलस कि भाई पत्थल के टुकड़ा बहुत बढ़िया बा, ओकरा के का कैलस कि छेनी हथौड़ी से ओकरा के भगवान के मूर्ति बना दिलस। आ मूर्ति बना के ले जाके एगो मंदिर में रख दिलस। जब मंदिर में रख दिलस तो एक दिन के समय है कि ई फूल के तोड़ के वह मंदिर पर वह पत्थल
1: पर
0: पर
1: भगवान पर
0: भगवान
1: चढ़ावल
0: पर चढ़ावल जात रहे। तो वह दिन वो पत्थर कहलस कि भाई देखा तू वह दिन बहुत घमंड में रह, लेकिन आज समय ऐसा बा कि तू हमरा पैर में बड़ा, हमरा पतहरा के लोग तोड़ के चढ़ावता। तो अब रह गेल कि वो पत्थर भी जब छेनी हथौड़ी के मार सहन कैलस तब कहल गेल बा कि आदमी भी अपना जीवन में कठोर मेहनत करके लोग के ईर्ष्या आ कठोर बात सुन करके आदमी का होलन कि तब जलन आ एक दिन वो मूर्ति भगवान के बन जलन। समाज में उनका विद्वता के उनका सफलता के लोग पूजा करेला। तो
1: देखिए
0: वही तरह
1: बच्चा
0: से
1: बड़ा
0: हम
1: सन से पढ़ाई करता सन तो
0: जी
1: 1 साल पढ़त सन तब जाकर उनके परीक्षा होता है।
0: जी
1: तो जब फाइनल परीक्षा होता तो रिजल्ट आवता तब न ओकर सफलता मिलता।
0: हाँ
1: तो जे बहुत मेहनत के लिए बहुत थोड़ा बढ़िया पावता, जे ना मेहनत के खेलकूद में गंवलस ओकर नहीं के। तो ऐसे देखी सफलता कहे के मतलब है कि कोनो हफ्ता महीना में ना आ जाला
0: एकरा खातिर
1: ओकरा
0: इंतजार
1: खातिर।
0: करे
1: हाँ
0: पड़ला।
1: एकरा खातिर समय के इंतजार करे के
0: जी
1: पड़ला, मेहनत करे के पड़ला आ उ लगन से जाके होला।
0: या कहल भी गेल बा कि सफलता जौन बानू तहन अपन परिश्रमिक खोजेला, मतलब बिना परिश्रम के कोई सफल ना होला। तो हमनी के कोशिश करे के चाहिए अपना जीवन में कि भरपूर मेहनत कैल जाओ, परिश्रम कैल जाओ, तो एक दिन
1: हाँ
0: सफलता एक ना एक दिन जरूर
1: जरूर
0: मिले।
1: मिली।
0: तो देखी झुनी बहन अब हम चाहते नहीं कि चले गए अपना खेती बाड़ी में या आज
1: हाँ
0: के जौन कार्यक्रम बा एकरा पर हमनी के चर्चा कैल
1: हाँ
0: जाओ।
1: तो आज का ओकरा से जानकारी मिले वाला बा तनका किसान भाई लोग के बताई।
0: देखी झुनी बहन सबसे पहले नू हमनी के आज जौन ई किसान बाणी कार्यक्रम बा एकरा में
1: जी
0: सबसे पहले अपना किसान भाई खातिर अपना एगो कृषि पर आधारित खबर सुनल जाई आज की खबरों के
1: खबर
0: अंतर्गत।
1: में हाँ
0: फिर एकरा बाद हमनी के आज की बातों के अंतर्गत गर्मी में जोताई खेत के जोताई से का लाभ बा
1: हो
0: एकरा पर हमनी के एगो वार्ता सुनल जाई वार्ताकार बानी अवधेश कुमार शर्मा।
1: हाँ तो
0: फिर हमनी के चलल जी नई उम्र की नई फसल में कि हरा खाद कैसे तैयार होला आ एकरा से हमनी के खेती में का लाभ
1: का
0: मिले।
1: लाभ।
0: एकरा बाद हमनी के आज के नसीहत में इस शिक्षा लिहल जी कि सरकारी जमीन के अतिक्रमण ना कैल जाओ, कारण कि अभी सरकार द्वारा बहुत सा ऐसा नियम कानून आ गेल बा कि सरकारी जमीन यदि रउरा दखल कैले बानी तो एकरा बदला में रउरा पर सजाए भी हो सकेला।
1: सजा होई
0: तो हमनी के बहुत
1: जुर्माना
0: सा गांव
1: लागी।
0: घर में आदमी ऐसा बढ़न जौन कि सरकारी जमीन के आपन जमीन समझ करके वो
1: हाँ
0: दखलेले
1: ओकरा के
0: बढ़न।
1: दखल कईले बा
0: तो
1: लोग।
0: कोशिश करे के बा कि मतलब सरकारी जमीन के अतिक्रमण मत करी। एकरा बाद हमनी के आज के मौसम से संबंधित बातचीत कैल जी, मौसम पूर्वानुमान पर भी चर्चा कैल जी आ मौसम पर आधारित जौन किसान भाई खातिर सलाह बा ओकरा पर भी चर्चा कैल जी। ताई हमनी के अपना किसान भाई खातिर कृषि पर आधारित खबर सुनल जाओ आज की खबरों के अंतर्गत।
1: देखी तो बड़ा बढ़िया हमने के जो कार्यक्रम के संक्षिप्त झलक रहे।
0: जी
1: तो खबर हमने के बाद राजू भाई
0: जी
1: कि आज के खबर बा कि रोहतास जिला में बेमौसम भइल बारिश के असर जौन बा गेहूँ के गुणवत्ता पर पड़ल बा। ITC यह वर्ष गेहूँ खरीद के कर मतलब 4 गो श्रेणी में रखले बा ABCD। तो इस 4 गो श्रेणी बा जौना में गेहूँ के गुणवत्ता के आधार पर मूल्य निर्धारित कैल गेल बा। तो हमनी के जिला के गेहूं के जौन बाटे C या D ग्रेड मानक एक पावल गई बा, जिसे माने बारिश के चलते कुछ गेहूं माने
0: मरा गई बा।
1: मरा गई बा।
0: तो वही
1: तो
0: हिसाब
1: हमनी
0: से
1: के
0: जो मार्का मिलल बा वो हमने के
1: हाँ सी या डी मिलल
0: जी
1: बाटे। तो देखी एकरा चलते हमनी के का होता कि कंपनी तो देखी है ना चाहे कौनो व्यापारी होकस व्यवसायी होकस कि हम सस्ता सामान ले ही महंगा बेची।
0: जी
1: जैसे गेहूँ और मराइलो लेलन तो आटा में तो कोनो अंतर नहीं लागत।
0: जी
1: तो मान ली जौन ए श्रेणी के बाटे उ रौरा के 2600 या 2700 रुपये मिलता आ C या D रौरा के अगर 2400-2500 रुपये मिल गई तो 200 रुपया के फायदा उनका हो गई। आटा वही भाव बेच दिलन
0: जी
1: तो उ का करता कि एकरा चलते एकरा में बहुत दिलचस्पी लेके बड़ा बड़ा व्यापारी या कंपनी दिखा रहल बड़ान। हालांकि अब तक 11,000 MT गेहूं के खरीद बड़ा कंपनियन द्वारा कैल गई बा। दिनारा प्रखंड के नटवार में ITC आ अडानी समूह से जुड़ल जौन कंपनी बा AWL आटा बनावे खातिर बड़ा मात्रा में गेहूं के खरीद कृषक उत्पादन समूह आ व्यापारिक के माध्यम से कैल जा गई बाटे। एकरा में अधिकतर गेहूं जौन बाटे उनका के C या D कैटेगरी के मिल रहा बा। आ गेहूँ से यह फायदा जो कि बतौनी है जो कि सस्ता लेके महंगा।

0: आटा बेचे के, तो देखी हमनी के रोहतास जिला के गेहूं मरा गई बा, लेकिन एक बड़ा बड़ा कंपनी आके ले रहा बा, तो कहीं के एक महत्व बढ़िए गई बा।
1: मतलब जौन हमनी के किसान भाई के लागत रहे कि हमनी के घाटा होई,
0: हाँ
1: पूरा दाम ना मिली, एक तरह से पूरा दाम मिल रहा बा।
0: मिल रहा बा।
1: तो देखी झुनी बहन, अब हमनी के देखल जा कि अभी गर्मी पड़ रहा बा, आ इस गर्मी में यदि हमनी के किसान भाई खेत के जोताई कर देते
0: हैं, हाँ, हाँ।
1: तो समझे कि जौन भी घास पात तनी मनी बा वो सुना जाए, आ माटी जौन बा तौन पूरा मुलायम हो जाला।
0: हाँ।
1: आ हर कोई के, हर किसान भाई के ये अरमान होला कि जौन हम खेती करी ओकरा में नीमन पैदावार होके। तो देखी नीमन पैदावार खातिर हमनी के आज अपना स्टूडियो में एगो वार्ता सुनावतन जा, वार्ताकार बानी अवधेश कुमार शर्मा। तो यहाँ के बताइब कि एह गर्मी के तपल जौन गर्मी पड़ रहा बा, एह गर्मी में यदि अपना खेत के खूब निमन से जोत दिहल जा तो ओकरा से का फायदा बा, तो आई हमनी के सुनल जा कि गर्मी में खेत के जोताई से का लाभ
0: फायदा बा।
2: गर्मियों में खेतों की जुताई का प्रचलन प्राचीन काल से होता आ रहा है, परंतु अब जबकि सघन कृषि द्वारा फसलोत्पादन हेतु मिट्टी पर दबाव बढ़ा है, गर्मियों में खेती की जुताई करना अत्यंत समीचीन हो गया है। गर्मियों में खेतों की जुताई गहरी की जाती है, इस हेतु मिट्टी पलटने वाले हल, तवेदार हल, देसी हल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी को वांछित गहराई तक खोला जा सकता है, साथ ही खेतों की सतह पर उगे हुए खरपतवार, फसलों के अवशेष आवश्यक गहराई तक दबाए जा सकते हैं। इस प्रकार जोते गए खेत उच्च ताप एवं गर्म सूखी हवाओं के संपर्क से मिट्टी की दशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इस मौसम की जुताई अगली फसल खरीफ के लिए खेत तैयार करना आसान बना देती है तथा खेत खरपतवार मुक्त मिलता है। अब हम यहाँ गर्मी की जुताई से होने वाले लाभों को थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाना। बिना जुते हुए खेत की मिट्टी कड़ी रहती है, जो वर्षा जल को आसानी से नहीं सोख पाती। गर्मी की गहरी जुताई करने से भूमि तप्त हो जाती है और सूखी मिट्टी में पड़ी दरारें भी भर जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ये मिट्टियाँ वर्षा जल को अच्छी तरह सोख सकती हैं और मिट्टी की जलधारण क्षमता का विकास होता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि गर्मियों में 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करने से मिट्टी में जल सोखने की क्षमता में 20-30% की वृद्धि हो जाती है। मृदा विन्यास सुधर जाती है, जिससे पौधों की जड़ों का समुचित विकास होता है और फसलों को नमी व पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। पौधों की जड़ों का फैलना व बढ़ना भूमि में उचित वायु संचार पर भी निर्भर करता है। मिट्टी में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीव, फफूंदी एवं जीवाणु अपना कार्य भली भांति कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि मृदा का विन्यास एवं उसकी संरचना ठीक बनी रहे। अनुकूल अवस्था में ही जैविक एवं रासायनिक क्रियाओं का उचित संचालन होता है, जो कि गर्मी की जुताई करने से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सपाट और बिना जुते खेत में पानी अच्छी तरह प्रवेश नहीं कर पाता है और ढाल की तरफ बहने लगता है। इस बहाव की क्रिया में बहुत से मिट्टी भी बह जाते हैं। इस प्रकार खेत की ऊपरी परत, जो बहुत ही उपजाऊ होती है, क्षरित हो जाती है। गर्मी की गहरी जुताई करने से वर्षा का जल भूमि के निचले सतह में सुगमता से प्रवेश कर जाता है। भूमि में जल अवशोषण की शक्ति बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन बहुत कम हो जाता है। खरपतवारों के नियंत्रण से लाभ। खरपतवार मिट्टी में उपस्थित या उपलब्ध कराए गए पोषक तत्वों एवं जल का बंटवारा करके फसलों के साथ प्रतियोगिता करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में फसलें अपेक्षित पोषक तत्व व जल की प्राप्ति नहीं कर पाती, जिसके फलस्वरूप उपज कम होती है। इसलिए

खरपतवारों का नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। गर्मी की गहरी जुताई कर देने से सभी एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय खरपतवार की जड़ें एवं अन्य भाग सूर्य की तेज धूप एवं सूखी हवाओं के प्रभाव से या तो नष्ट हो जाती हैं या नीचे दबकर सड़ जाती हैं। बहुत से खरपतवारों के बीज भूमि की ऊपरी सतह पर होते हैं और प्रायः एक बार अंकुरित होते हैं। गहरी जुताई से ये बीज मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और वे आसानी से अंकुरित नहीं हो पाते। यदि अंकुरित होते भी हैं तो इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि प्रतियोगिता में फसलें आगे बढ़ निकल जाती हैं। अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि गर्मी की गहरी जुताई कर देने से अनेक खरपतवारों की वृद्धि रोकने एवं उनके उन्मूलन में काफ़ी सहायता मिलती है। फसलों की क्षति पहुंचाने वाले शत्रु कीटों पर नियंत्रण। बहुत से कीट फसल अवशेषों में रहते हैं, जैसे मक्का का वेधक कीट, व्हाइट ग्रफ्स, दीमक आदि। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से मिट्टी के नीचे छिपे रहने वाले कुछ शत्रु कीटों के अंडे, प्यूपा, पिल्लू मिट्टी की सतह पर आ जाते हैं। जुताई के समय कौवा, मैना इत्यादि परभक्षी इन कीड़ों के अंडे, प्यूपा आदि को खा जाते हैं। बहुत से कीड़े गहरी जुताई द्वारा सतह के नीचे भी दबकर मर जाते हैं। इस जुताई से तना बेधक कीट के नियंत्रण में भी मदद मिलती है। गर्मी की जुताई से सूर्यमुखी का शत्रु कीट डेटेक्स टेक्सनस के अधिकांश पिल्लू मर जाते हैं। इस प्रकार गर्मी की जुताई कर देने से शत्रु कीटों का प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि गर्मी की जुताई शत्रु कीटों के नियंत्रण में काफ़ी मददगार साबित होती है। फसलों के रोग नियंत्रण में लाभ। रोग फैलाने वाले बहुत से फसलों के रोग मिट्टी जनित होते हैं, अर्थात रोगाणु के जीवन चक्र की कुछ अवस्थाएं मिट्टी में रहती हैं। मिट्टी में छिपे ये रोगाणु अगली फसल बोने पर उसे गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। गर्मी की गहरी जुताई समेकित रोग प्रबंधन का एक घटक है। गर्मी की गहरी जुताई करने से मिट्टी में छिपे रोगाणु ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जहां वे तेज़ धूप एवं उच्च ताप के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस जुताई से मिट्टी जनित रोगाणु स्क्लेरोसियम, फ्यूजेरियम, उडम, राइजोवेक्टिनिया स्पेसीज, फाइटोप्थोरा नामक फफूद के अधिकांश हिस्से नष्ट हो जाते हैं। चना तथा मसूर में झुलसा रोग को फैलाने वाले एवं गेहूं में स्कैब रोग के फैलाने वाले रोगाणु जिबरेला वंश के कवक द्वारा लगता है। बहुत सारे फसलों के सूत्रकृमि निमाटोड भी मिट्टी में रहते हैं, जो गर्मी की जुताई द्वारा ऊपरी सतह पर आकर मर जाते हैं। इस प्रकार गर्मी की जुताई से फसलों के रोग नियंत्रण में भी मदद मिलती है। जैव पदार्थ के उपलब्धता में वृद्धि। फसल कटाई के बाद फसलों के अवशेष यूं ही पड़े रहते हैं। इन अवशेषों पर फसलों के शत्रु कीट एवं रोगजनक की अवस्थाएं पनपती रहती हैं। इसके साथ ही कुछ फसल अवशेषों की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि साधारण कल्टीवेटर या देसी हल से खेत की तैयारी में बाधा उत्पन्न करती हैं। गहरी जुताई करने से फसल के अवशेष उखड़कर या पलटकर मिट्टी में दब जाते हैं, जो बाद में सड़कर आने वाली फसल के लिए खाद का काम करती हैं। किसान भाई सीमित क्षेत्र में धान आदि की नर्सरी तैयार करने वाले खेतों में सूर्य ताप के प्रभाव यानी सौर ऊर्जा प्रभाव का उपयोग मृदा जनित हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रोकने, खरपतवारों के उन्मूलन, मिट्टी में छिपे कीड़े एवं सूत्रकृमि को

0: नष्ट करने में कर सकते हैं। इसके लिए गर्मी की गहरी जुताई करके खेत की सिंचाई कर दी जाती है। इसके बाद 6 से 8 सप्ताह के लिए मोटी पारदर्शी सफ़ेद पॉलीथीन की चादर से भूमि को ढक दिया जाता है। इस क्रिया से मिट्टी का ताप लगभग 60 डिग्री तक पहुंच जाता है और अधिकांश जीव रोगकारक नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्मी की जुताई से अनेकों लाभ हैं।
1: देखी कितना निमन जानकारी दीनी अवधेश कुमार शर्मा कि गर्मी में यदि हमने के अपना खेत के जुताई कर दिया
2: तो
1: कितना फायदा हुई। तो देखी झुनी बहन हमने के बातचीत और तब कर ली जब एगो संदेश सुन लिया, तो आई हमने के एगो संदेश सुन लिया।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वहीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पाद

0: उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
1: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: राजू भाई,
1: जी
0: हरा खाद बनावे खातिर जैसे ढैंचा हो गई, सनई हो गई, मूंग, उड़द और लोबिया जैसन दलहनी फसलन के मुख्य खेत में उगावल जाला।
1: जी देखिए झुनी बहन, आज के समय के ई जरूरत बा कि हमनी के रासायनिक खाद से इतना नुकसान हो रहल बा हर
0: रासायनिक
1: आदमी
0: खाद,
1: के।
0: रासायनिक दवाई जो
1: हाँ,
0: छिड़का रहल
1: ये
0: बा।
1: सब बड़ बीमार आदमी जौन हो रहल बा आज गांव घर में, एकरे परिणाम बा। तो हमनी के अब कोशिश करे के चाहिए कि यदि निरोग वाला खाना खाए के बा तो ओकरा खातिर अपना अपना खेत में हरा खाद ही डालल जाओ। आ देखिए एकरा के तैयार करे खातिर ढैंचा, सनई आ मूंग आ लोबिया जैसन फसल के बो करके 40 से 45 दिन के जब हो जा, जब ओकरा में फूल लागे लागे, ओकरा पहले खेत में रोटावेटर चाहे कल्टीवेटर से खेत के जोताई कर देवे के चाही। आ वही खेत में ओकरा के दबा दिहल जाला। एकरा से जैविक तरीका से माटी में नाइट्रोजन आ कार्बनिक पदार्थ भी पूरा मिल जाला। आ वो समझे कि हरा खाद तैयार हो जाला।
0: तैयार हो जाला।
1: तो देखी अब हमनी के आज के नसीहत बा कि हमनी के गांव घर में जौन सरकारी जमीन बा ओकरा के सरकार के ई चाहता कि भैया एकरा के तू छोड़ा, हम अपन
0: हाँ,
1: जौन
0: एकर
1: एकरा में।
0: अतिक्रमण न करी
1: हाँ
0: तो देखी रजू भाई, सरकारी जमीन जौन बा एकरा पर अतिक्रमण के मतलब है कि अवैध कब्जा, तो ई कईल जौन बा कानूनन अपराध है।
1: जी
0: सरकारी संपत्ति जैसे कि सड़क हो गई, पार्क हो गई, तालाब हो गई, ये सब पर कब्जा कैला पर भारतीय कानूनन के तहत भारी जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से देवे के पड़ेला
1: जी
0: आ 6 महीना तक जेल जाए के भी प्रावधान बा। आ देखी, अदालती आदेश आ सख्त सरकारी नीतियन के तहत अवैध निर्माणन के प्रशासन द्वारा बिना मुआवजा के ध्वस्त कर दिहल जाता। यदि कोई व्यक्ति सोचता कि कई वर्षन तक कब्जा रखे से हम सरकारी जमीन के मालिक बन जाए तो ई देखी संभव नहीं है। सरकारी भूमि के उपयोग जनबा सब नागरिकन के विकास आ सार्वजनिक सुविधा खातिर ही कैल जाला। यदि रउरा आस पास भी कोनो सार्वजनिक रास्ता चाहे जमीन पर अतिक्रमण हो रहा बा तो एकर शिकायत रउरा अपना स्थानीय नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर चाहे राजस्व विभाग के दे सकीला।
1: आ देखिए यदि 30 साल से कोई सरकारी
0: हाँ
1: जमीन दखलियैले बड़न तो उनका संगे ई स्पष्ट सरकार के निर्देश बा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्देश दिहल गेल बा कि जमीन के जल्दी से खाली करा। तो एह तरह से हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि सरकारी जमीन के अतिक्रमण से बचल जाओ। आ देखिए अब चले के हमनी के अपना खेती बाड़ी में, जहाँ कुछ मौसम संबंधी पूर्वानुमान ई बा
0: हाँ
1: कि
0: किसान भाई लोग भी
1: हाँ
0: सलाह मशविरा कुछ दे दिया जाए।
1: जी, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार
0: जी
1: पूर्वानुमान ऐसा बा कि 20 से 24 मई के दौरान हमनी के जिला में आसमान साफ रही आ मौसम शुष्क रहे के अनुमान बा। जिला में लू जौन बा ई चले के ज़्यादा संभावना बा। अधिकतम तापमान हमनी हियाँ 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा आ न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 50 से 60% आ दोपहरिया में नू 15 से 20% रहे के ऐसन अनुमान बा।
0: संभावना बा।
1: यह समय हमनी के आसपास 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वैया हवा भी चल सकेला। एहमे हमनी के मौसम संबंधी किसान भाई लोग के ई सलाह दिहल जा रहल बा
0: जी जी
1: ये स्थिति में नमी में खेत में कमी आई, पत्ती जौन बा खेत के झुलस सकेला, ए पशु के दूध भी कम हो सकेला, तो सुबह शाम हमनी के अपना खेत के हल्का पटवन कर देवे के चाहिए।
0: मतलब खेत में नमी बनल रहे।
1: जी आ खेत में आवश्यकता अनुसार उर्वरक कीटनाशी के छिड़काव अपना हिसाब से करे के चाहिए।
0: समय पर करत रहे के चाहिए।
1: आ देखिए एमें अब हमनी खातिर सुबह शाम हल्का सिंचाई तो करें के चाहिए आ कीटनाशक भी आवश्यकता अनुसार देवे के चाहिए।
0: हाँ, कीटनाशक के छिड़काव करी। आ देखी, फसल में जैसे मूंग बाटे,
1: जी
0: मूंग आ उड़द के फसल में रस चूसक कीट जौन बाटे।

0: माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट के निगरानी करे के खातिर एकरा बचाव खातिर मैलाथियन 50 cc आ डाइमेथियोटजन बाटे 30 cc के 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से फसल में छिड़काव रोड़ा करत रही।
1: आ देखी हमनी के गांव घर में अभी बहुत आदमी नु लतरदार सब्जी के खेती कइले बा। तो एकरा में अभी लतरदार सब्जी जौन बा ओकरा में फल मक्खी या लतर वाला सब्जी जैसे नेनुआ बा, करैला बा, लौका भइल या खीरा के फसल के ई फल मक्खी जौन होली सन तो नुकसान करल सन। तो एक कीट के यदि प्रकोप हमनी के किसान भाई के फसल में भइल होके तो एकरा खातिर 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मैलाथियान, 50 cc के 1,000 लीटर पानी में घोल बना के 15 दिन के अंतराल पर 2 बार हमनी के
0: छिड़काव करें,
1: लतरदार फस सब्जी पर के
0: छिड़काव
1: पौधा पर
0: करें।
1: छिड़काव करे के चाहिए। यही तरह से भिंडी के जे भी खेती कैले बनी
0: हाँ
1: किसान
0: हाँ
1: भाई तो उनकरा में यदि कोई रोग लागत होके तो एकरा खातिर इमिडाइक्लोप्रीन 0.5 लीटर प्रति लीटर के दर से पानी में घोल बना के छिड़काव करे के चाहिए।
0: आ देखिए रजू भाई, अब हमनी के घड़ी इशारा कर रहल बिया किसान भाई बहन लोगन से विदा लेवे के,
1: जी
0: तो चले चले के बेरा में सब श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम, रजू भाई रघु के नमस्कार।
1: नमस्कार झुनी बहन आ सब श्रोता भाई बहन लोगन के भी रज्जू भाई के तरफ से नमस्कार। आ देखी यह कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार। तो चलत चलत सब किसान भाई आ श्रोता भाई लोग के नमस्कार।

अभी हमारे किसान भाई अपना प्रसारण सुन रहे थे, किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सांझ गीत।

तो श्रोताओं, अभी आपने दामाद जी फिल्म का गीत सुना मनोज तिवारी की आवाज़ में। शब्द का अर्थ है विनय बिहारी, धुन तैयार की थी लाल सिन्हा ने। आइए सुन लेते हैं जाने मन फिल्म का एक नगमा, आलोक कुमार की आवाज़ में। ऋषि ज्वाला और अरविंद तिवारी के लिखे गीत की तर्ज बनाई है घुंघरू ने।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: और अब आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में विनय बिहारी का लिखा गीत। संगीत रचना है धनंजय मिश्र की, फिल्म है विदाई।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत। निरहुआ रिक्शा वाला, जी हाँ, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रजनीश मिश्र की आवाज़ में। श्याम देहाती के लिखे गीत की संगीत रचना की है राजेश रजनीश ने।

और अब आइए सुनते हैं रविंद्र जैन का लिखा और स्वरबद्ध किया नगमा, जसपाल सिंह और हेमलता के स्वरों में। फिल्म है नदिया के पार।

और कार्यक्रम का समापन मनोज तिवारी और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में विनय बिहारी के लिखे गीत लाल सिन्हा के संगीत के साथ, फिल्म का नाम है ससुरा बड़ा पैसा वाला।

0: सुन, सोचतानी कि काहे ना आपन बिजनेस बढ़ाई।
1: त रोकले के बा?
0: रोकले तो कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत कि कैसे मदद मांगी।
1: हमरा से?
0: तुहरा से? तो बतावो।
1: आकाशवाणी बा ना, हम सुनले बानी कि आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा।
0: तो ओकरा से हमरा की का फायदा बा?
1: फायदा बा, जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुँच जाई।
0: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई?
1: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 8700014242।
0: ओ 8700014242।
1: हाँ।
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर।
2: तो इस संदेश के पहले आपने ससुरा बड़ा पैसे वाला फिल्म का गीत सुना, और इन्हीं गीतों के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। जी हाँ, समाहरणालय कैमूर, जिला जनसंपर्क कार्यालय कैमूर से प्राप्त सूचना के अनुसार जिले के सभी प्रखंडों के चयनित पंचायतों में आयोजित हुआ सहयोग शिविर। माननीय प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं वरीय अधिकारियों ने लिया कार्यक्रम में सक्रिय भाग। आम जन की समस्याओं का मौके पर ही किया गया त्वरित समाधान। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कैमूर जिले के सभी प्रखंडों के एक एक चयनित पंचायत में आज सहयोग शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष अभियान का उद्देश्य आम जन की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था। जिले के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं विभिन्न विभागों के वरीय नोडल पदाधिकारियों ने सभी सक्रिय रूप से भाग लिया। अधिकारियों ने आम जन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। वहीं एक अन्य सूचना के अनुसार भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए कैमूर जिले में कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र 23 मई तक रहेंगे बंद। जी हाँ, कैमूर जिले में लगातार बढ़ते तापमान तथा विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आम जन एवं बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कैमूर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 20 मई से 23 मई 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। कक्षा 9 से 12 तक के विशेष व्यवस्था आदेशानुसार

अनुसार कक्षा 9वीं से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियां केवल पूर्वाह्न 10:30 बजे तक ही पर्याप्त सावधानियों के साथ संचालित की जाएंगी। शेरशाह सूरी महोत्सव 2026 जहां जिला रोहतास सासाराम में जिला अंतर्गत शेरशाह महोत्सव 2026 के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 21-22 मई 2026 को स्थान फजरगंज स्टेडियम सासाराम रोहतास के प्रांगण में आप भी पधारें। आज दिनांक 19-5-2026 को माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सह रोहतास जिला प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को रोहतास जिले में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेकर विभिन्न पंचायतों में आम जनों की समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नासरीगंज, नोखा, संजौली एवं सासाराम प्रखंड के पंचायतों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आम लोगों की समस्याओं का त्वरित एवं संवेदनशील तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं जिला जनसंपर्क कार्यालय कैमूर से प्राप्त एक अन्य सूचना में माननीय मंत्री श्री संजय सिंह टाइगर की अध्यक्षता में अनुपालन विकास योजनाओं और विधि व्यवस्था की हुई गहन समीक्षा। आज दिनांक 19-5-2026 को माँ मुंडेश्वरी सभागार कैमूर में प्रभारी मंत्री सह माननीय मंत्री उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग बिहार सरकार श्री संजय सिंह टाइगर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन के तमाम वरीय अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अभियंताओं ने लिया भाग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुन लेते हैं एक शानदार नगमा।

0: इधर आइए, इधर
1: इधर।
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

0: दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले से राज्यव्यापी अभियान का किया शुभारंभ। राज्य में भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर पार्टी करेगी आंदोलन। और राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए नबीनगर एनटीपीसी परियोजना का होगा विस्तार। 8-800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर राज्यव्यापी अभियान का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को किया जाएगा।
1: और ये कार्यक्रम दो बार महीने में पंचायतों के स्तर शिविर लगेगा और दो बार, पहली मंगलवार और तीसरी मंगलवार को। आपके सहयोग के लिए सरकार जारी है, चाहे वो अंचल का काम हो, शिक्षा विभाग का काम हो, चाहे वो ब्लॉक का हो या थाना का काम हो, जिसमें भी रुकावट है वो 30 दिन में नहीं करेगा, उसके पदाधिकारी को निलंबित करने का काम हमारी सरकार करेगा।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति की मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से सीधी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के दानापुर अनुमंडल के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बरौनी प्रखंड अंतर्गत भरत उच्च विद्यालय पिपरा देवस में सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तेघड़ा के विधायक रजनीश कुमार, जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक मनीष समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इधर दरभंगा जिले में 24 स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कटिहार में आयोजित सहयोग शिविर के माध्यम से 2975 शिकायतों का निष्पादन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सदर प्रखंड के भवाड़ा पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। वहीं अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिले के प्रभारी मंत्री सह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शिविर का उद्घाटन किया। अन्य जिलों में भी विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के प्रभारी सह योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सदर प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल होकर आम जनों की समस्याओं और शिकायतों को सुनने के लिए शिविर के निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बसडीहा स्कूल मैदान में प्रभारी

0: मंत्री रमा निषाद ने सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। इसके साथ ही न्यायाधिकरण में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आम लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने और भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए यह निर्णय लिया गया है। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजद महिलाओं के मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करेगा।
1: लगातार ये सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करती है, जो सच्चाई है बिहार की। अपराधी जो है हमारी माताओं बहनों पर बेटियों पर कहर बनकर के टूटे हैं, इसमें सम्राट चौधरी जी की सरकार पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रही है। प्रशासन कहीं नहीं नजर आ रहा है और ये गंभीर समस्या बन गई है बिहार के लिए, और खास तौर पे जो आम बिहारी है वो बहुत चिंता में है।
0: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने लोहार जाति को फिर से अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने के विषय को लेकर बिहार राज्य लोहार समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की। समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को इस संबंध में दस्तावेज सौंपते हुए सहयोग का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जुड़े इस मामले में संसद के माध्यम से ही पहल संभव है। श्री कुमार ने कहा कि दस्तावेजों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार से पत्राचार किया जाएगा। औरंगाबाद जिले के नबीनगर में स्थित एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर परियोजना का विस्तार किया जाएगा। कंपनी के परियोजना प्रमुख एलके बेहरा ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए नबीनगर परियोजना के स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।
2: ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का कल्याण में आएगा, बिहार देश का हित में ही आएगा। ये बिजली तो अपना बाहर देश को तो नहीं जा रहा है, हम लोग देश में ही बिजली के लिए, हम लोग का तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगा तो उसी का पाई किसी न किसी का पे बैक होता है। उसी तरह का हम लोग का जो ये पावर प्लांट होने के कारण जो लोग रोजगार मिल रहा है वो सर्कुलर इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
5: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनी मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। श्री मांडविया ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत मामलों की पहचान कर उनके निपटारे की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि EPFO व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ई

0: फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ कल देश भर में हड़ताल की घोषणा की है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि 20 मई को प्रदेश की दवा दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां नकली, नशीली और अवैध दवाओं की बिक्री कर रही हैं, जिससे समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। दवा विक्रेताओं ने ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर अंकुश की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबी क्यूल झाझा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हावड़ा दिल्ली मार्ग पर क्षमता बढ़ाने के लिए 962 करोड़ रुपए की लागत से इस रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने से इस अति व्यस्त रेलखंड पर यात्रियों और मालगाड़ियों की आवाजाही अधिक सुगम और समयबद्ध हो सकेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे हावड़ा दिल्ली मार्ग पर परिचालन क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने पटना और उड़ीसा के खोरधा रोड जंक्शन के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। पटना खोरधा रोड स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार की सुबह 8:45 पर पटना जंक्शन से खुलेगी और अगले दिन 3:35 पर खोरधा रोड पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को खोरधा रोड से दोपहर 3:15 पर खुलकर अगले दिन सुबह 10:45 पर पटना पहुंचेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। समिति के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 8 जून से 22 जून तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा के लिए सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थी 28 मई से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। समिति की वेबसाइट form.bsab.deled.com से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज भभुआ और रोहतास जिले में लू के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि रोहतास, भभुआ, बक्सर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। वहीं चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के उत्तरी भागों में मौसम में परिवर्तन की संभावना है। इस दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में आंधी बारिश हो सकती है।
1: दिनांक 20 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर भीषण गर्मी के मद्देनजर कैमूर जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 23 मई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी पटना में अब पेट्रोल का मूल्य 110.02 रुपये प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 94.97 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सारण पुलिस ने नशा मुक्त सारण अभियान के तहत जिले के विभिन्न भागों में छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त की। इस संबंध में 14 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। शिवहर जिले में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आज समापन हो गया। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे समापन सत्र में शामिल हुए। सुपौल जिले के बलुआ स्थित पुनर्वास स्कूल में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 6 से 7 वर्ष के बच्चों में संक्रमण की स्थिति के आकलन के लिए TAS1 जांच की गई। सुपौल जिले के बीरपुर में भारत नेपाल सीमा के समीप SSB जवानों ने जांच अभियान के दौरान एक नाबालिग लड़की को मानव तस्करों से मुक्त करा लिया। जांच अभियान के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब और गांजा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मेहूस गांव में संचालित वस्त्र निर्माण केंद्र में कार्यरत मजदूरों को

0: विकसित भारत योजना और पीएफ योजना से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने आज इस वस्त्र निर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले से राज्यव्यापी अभियान का किया शुभारंभ। राज्य में भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर पार्टी करेगी आंदोलन। और राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए नबीनगर एनटीपीसी परियोजना का होगा विस्तार। 8-800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है अररिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।
5: अररिया जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के 12 पंचायतों में इसका भव्य शुभारंभ जिला पदाधिकारी विनोद तुहन ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को शिविरों के सफल संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री दुहन ने कहा कि जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निवारण के उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को नियमित रूप से इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिविरों में केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आम लोगों को दी जा रही है, ताकि समाज के अंतिम पायदान तक अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है और अब तक लगभग 71.45% कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणनक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणनक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। इधर जिले में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को लेकर विभिन्न विभागों की तैयारी की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले के फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस एक्सप्रेस के परिचालन से सीमांचल क्षेत्र में रेल विकास को नई गति मिली है।
6: प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि लगातार हमारे जिले में नई ट्रेनों का सौगात 6 महीना में मिलते रहता है और आने वाला दिन में और भी कई ट्रेनों का सौगात हमारे जिला को मिलने वाला है।
5: अररिया व्यवहार न्यायालय में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडे और जिलाधिकारी विनोद दुहन ने संयुक्त रूप से लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस दौरान ट्रैफिक चालानों के निष्पादन को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। लोक अदालत में लगभग 1,227 मामलों का आपसी सहमति के आधार पर ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया, जिनमें

0: 48 ट्रैफिक चालान शामिल हैं। अररिया जिले में बीते दिनों नागरिक सुरक्षा अभियान के तहत ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में शाम 7 बजे से 7:15 तक बिजली बंद कर ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान चौक चौराहों पर सायरन बजाकर हवाई हमले की प्रारंभिक चेतावनी दी गई, जिसके बाद नागरिकों और संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। जिलेवासियों ने निर्धारित अवधि तक घरों, प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों की रोशनी बंद रखकर आपातकालीन तैयारी में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। जिला मुख्यालय स्थित नियोजनालय संयुक्त श्रम भवन परिसर में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया। इस जॉब कैंप में कई पदों के लिए आवेदन लिए गए। इस दौरान निजी कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। निर्धारित योग्यता रखने वाले जिले के सैकड़ों युवाओं ने जॉब कैंप में भाग लिया। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से ऑफर लेटर प्रदान किया गया। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में चमकी बुखार, दिमागी बुखार की रोकथाम और जन जागरूकता को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान सदर अस्पताल में 10 बेड का पीकू वार्ड, अनुमंडलीय अस्पताल फॉरबिसगंज में 5 बेड का वार्ड तथा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चमकी बुखार, दिमागी बुखार के मरीजों के लिए 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जीविका और आंगनबाड़ी कर्मियों के माध्यम से चमकी बुखार से बचाव को लेकर जन जागरूकता फैलाने का निर्देश दिए। साथ ही पशुपालन विभाग को बड़े सूअरों को रिहायशी इलाकों में दूर रखने के भी निर्देश दिए। अररिया जिले में वट सावित्री पूजा का पर्व पारंपरिक आस्था के साथ मनाया गया। इस दौरान अखंड सुहाग की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। सुबह से ही शहर के विभिन्न मंदिरों और वट वृक्षों के आसपास बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना के लिए पहुंची और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूजा की। महिलाओं ने वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर पति की दीर्घायु की कामना की।
1: अभी आप सुन रहे थे अररिया जिले के हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ई मन पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। श्रोताओं, सबसे पहले एक विनम्र निवेदन की मौसम को ख्याल रखते हुए आप अपने घर से जब भी निकलें तो सर पे तौलिया, रुमाल, गमछा आप जो भी उचित समझें ज़रूर लगाएं रखें और आँखों पर हो सके तो काला चश्मा भी, ताकि हीट रेडिएशन से आँखों को बचाया जा सके। आजकल के मौसम में खुद को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। स्वच्छ और शीतल पानी पिएं, सादा भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, ज़रूरत पड़ने पर नज़दीक के चिकित्सक से परामर्श भी लें, आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला नगमा आप सभी श्रोताओं के पसंद पर साजन फिल्म से। अलका याग्निक के साथ इस गीत को गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम ने और समीर के लिखे गीत की संगीत रचना दी है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, अर्चना कुमारी, नंदिनी कुमारी और आपकी सहेलियां। और साथ ही साथ इसी गीत के लिए हमें और भी फरमाइशें मिली हैं। जी हाँ, आप हैं वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और करणवीर हाउस बूचो कैंचिया से कैंचिया भटिंडा पंजाब से इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर बरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का साजन फिल्म का यह गीत।

0: या ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से ई मन पसंद कार्यक्रम। आइए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, नागिन फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की अमर आवाज़ें, वर्मा मलिक के शब्द और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का धुन। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइशें आपकी मिली हैं श्रोताओं। आप हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइशें आपकी भी मिली हैं। जी हाँ, आप हैं हमारे श्रोता मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, सबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। और ग्राम पीपर लोड सर गांव छत्तीसगढ़ से आप हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइशें आपकी भी मिली हैं हिंदुस्तान रेडियो मित्र से आप हैं बन्ने बुजुर्ग, पजेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आप हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का नागिन फिल्म का ये नगमा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: हालत कुछ अपनी भी ऐसी है मेरी जान, लेकिन कश्ती शाम का

प्रेम बंधन, जी हाँ, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत हमारे श्रोतागण सुनना चाह रहे हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आनंद बख्शी की शब्द रचना है, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और फिल्म है प्रेम बंधन। इस गीत को सुनना चाहते हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और आपके परिवार के सदस्यगण, और साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाहते हैं कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, और एक फरमाइश इस गीत के लिए कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आई है। श्रोता है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला, जिला गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, और आप हैं बालोद, जी हाँ, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया, और मास्टर अल कबीर ने इस गीत को सुनना चाहा है। आइए हम सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का प्रेम बंधन फिल्म का ये नगमा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अपना देश, आइए सुनते हैं इस फिल्म में आशा भोसले के साथ राहुल देव बर्मन को। आनंद बख्शी के लिखे गीत की तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं हमारे श्रोता उस्मान अली अंसारी, आसिफ अली अंसारी, आमना खातून अंसारी, सनूबर परवीन अंसारी, शुमैला परवीन अंसारी और गुड़िया अंसारी, रियाज सऊदी अरब से अशरफ अली अंसारी और मौनास भंजन से आपने यह SMS किया है और साथ ही साथ ईमेल किया है, क्षमा करेंगे, और साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। और ये एक मेल आता हुआ दिख रहा है राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता और ऐशबाग लखनऊ से आप हैं रानी गुप्ता, मुकेश गुप्ता, रश्मि गुप्ता, नीलम गुप्ता, कुसुम गुप्ता और रूपा इलाहाबादी। और एक और ईमेल इस गीत के लिए है जहां आप हैं ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार की ओर से ये फरमाइश है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं अपना देश फिल्म का ये नगमा इन शब्दों के साथ कि ऐसे देखा है तो खता क्या है, यदि ये जफा है तो फिर वफा क्या है। लीजिए सुनिए।

बहुत शानदार नगमा हमारे श्रोता सुनना चाह रहे हैं सौतन फिल्म से। किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। सावन कुमार के लिखे गीत की तर्ज बनाई है उषा खन्ना ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह ने। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइशें आपकी भी आई हैं। आप हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गहवाड़कर, राही सरिता गहवाड़कर,

नीता सिद्धांत गहवाड़कर, अर्जुन गहवाड़कर, टुक टुक। और ये एक मेल आता हुआ दिख रहा है उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश की ओर से। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं सोहन जोशी जी और पायल जोशी, और साथ ही साथ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आप हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं महावीर स्थान सासाराम से तुलसी भगत, शिव पूजन भगत और अयोध्या भगत और आपके परिवार के सभी सदस्यगण। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

तो अभी आपने सौतन फिल्म का ये नगमा सुना, और अब आइए सुनते हैं एक बहुत ही गंभीर गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। किशोरदा बहुत ही सीरियस सॉन्ग्स गाने के उस्ताद माने जाते हैं। चलिए वैसी ही एक फरमाइश आई है हमारे श्रोताओं की ओर से। फिल्म का नाम है कोरा कागज़। एमजे हसमत के लिखे गीत की तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं गढ़ नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह बड़क सिंह चौहान, ग्राम खरवत गढ़ नोखा से आप हैं मोती माला गुप्ता, लाल बिहारी सिंह और विजेंद्र पासवान। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइशें आपकी भी मिली हैं, आप हैं नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीतामणि देवी, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे जी ने भी हमें मेल किया इस गीत के लिए, और अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चिन्नू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर ने सुनना चाहा है इस गीत को, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से। और साथ ही साथ एक और फरमाइश ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, गौतम नगर नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोधले और आरती जोधले। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये नगमा। ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

जिंदगी टूट के रिश्तों में बिखर जाएगी, एक तेरे नाम के जुड़ने से समर जाएगी। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धरती का एक बहुत ही खूबसूरत गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत की तर्ज बनाई है शंकर जय किशन ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं फुटानी चौक नारायण स्ट्रीट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन छोटू, अमित सुमित, अमन पराशर, बेबी आराध्या और नंदू पंडित जी। भोपालबाड़ी उदयपुर से आप हैं ललित चौरड़िया, स्नेहलता जैन, और इसी गीत के लिए हमें फरमाइशें आपकी भी हैं। जी हाँ, आप हैं छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बीटिया, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, लक्ष्मीनिया जिला बेगूसराय से आप हैं शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली, और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बाजाज, साहिल बाजाज, बिट्टा बाजाज, और नूर महल मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से इस गीत को सुनना चाहते हैं मुसरत जहानाज, तरत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीनाज, नाजिया नूरीनाज, और क्वात बिहार से नरगिस जफर, कलेर बिहार से बेगम निकहत परवीन, और पटेल नगर मालवट से आप हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू जी। आकाशी सासाराम से आप हैं आलिया, इब्राहिम, कमाल, मेराज, साकिबा, निसार, पंकज कुमार और आपके मित्रगण। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार टूडी, प्रमोद कुमार टूडी, पुष्पेंद्र कुमार टूडी, और ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीना कारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम नहौना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार।

हमें इस गीत के लिए आपके भी ईमेल मिले हैं। आप हैं दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेडियो रेलवे स्टेशन से आप हैं एसपी जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल।

तो श्रोताओं, ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद में बस इतना ही। संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित

0: समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard.
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

0: उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी

से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में

0: अपनी टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोकधारा कार्यक्रम में कुछ लोकगीत।

तो अभी आपने गोदना गीत सुना, गायक कलाकार थे भरत सिंह भारती और साथी। कार्यक्रम का समापन संतराज सिंह की गायी इस रचना से।

श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ ही आज का लोकधारा कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी

रात्रि के 9:15 हुए हैं महफिल गजलों के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की गाई ये रचना।

शब्दकार हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज, संगीत रचना अलाउद्दीन खान की, सर गुलाम अली की।

ग़ुलाम अली की गाई इसी रचना के साथ ही आज की हमारी ये महफिल अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो की सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं, उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था। वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग।